0: देगा? तस्बीह। जब मुत्तकी की बात आएगी क्या दिखाई देगा? मुसल्ला। जब मुत्तकी की बात आएगी क्या दिखाई देगा? नमाज शब। जब मुत्तकी की बात आएगी क्या दिखाई देगा? हज व ज़ियारत। ऐ खुदा के बंदे, ये सब शायद शायद बेशक बेशक मुत्तकियों के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक काम ऐसा है, अगर वो नहीं तो वो तू मुत्तकी नहीं बन सकता। लेकिन ये बात ना हमने समझी है या ना हमको किसी ने समझाई है। मुत्तकी बनने के लिए गुजराती में कहवाई, नमाज ना ढगला नथी वारवाना, सजदा होना ढगला नथी वारवाना, वजीफा ना पानाओं ने नथी घसी नाखवाना। गुजराती में वजीफा समझते हो क्या होता है? वो हमारा नहीं, गुजराती में मजमुआ ने वो सब है, वो फर फट गए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं हो गया परहेजगार, मैं हो गया मुत्तकी। आइए आज आपको बताऊंगा खुदा के यहाँ मुत्तकी होते हैं कौन। और ये शायद मुझे किसी ने समझाया ही नहीं कि ये भी तकवा है, ये भी परहेजगारी है, ये भी दीनदार होने की दलील है। आइए सूरह बकरा, कुरान मजीद का कौन सा सूरा है? दूसरा। पहली पांच आयत पढ़ देगा जबानी, वहां से चोरी करके नहीं। हाँ, पढ़ो पढ़ो। कोई बात नहीं, फिर भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ, कोई बात नहीं। मौलाना मैं हूँ, वरना तू पढ़ता होता यहाँ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वाले मुहम्मद। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरह बकरा, सबको जबानी याद है, सुनिएगा, हर रोज ये पढ़ते हैं, हर रोज ये सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, अलिफ लाम मीम। उसके बाद वो किताब जिसमें कोई शको शुबा नहीं है, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये किताब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब भी हिदायत है मुत्तकियों के लिए। सवाल, मुत्तकी है कौन? तीसरी आयत, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून। मुत्तकी हजरात वो होते हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं, और हमने जो उनको दिया है उनमें से इन्फाक करते हैं। मुत्तकी कौन है? हमने जो दिया है, तेरे पास जो है वो तेरा नहीं, तेरे पास जितनी भी माले तुजार की मिलकत हो वो तेरा न तो तेरा बाप का, वो सब खुदा का दिया हुआ। मुत्तकी वो है, वह मिम्मा रजक ना हम युन्फिकून, और जो हमने रोजी के तौर पर उनको दिया है वो अल्लाह की राह में देते हैं। आपने देखा यहां पर भी बात क्या आई, मुत्तकी वो होते हैं कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले होते हैं। क्या ये पहलू हमको किसी ने बताया कि भाई ये भी तकवा है? उसके बाद वाली, अब चोरी कर सकता है। चौथी आयत, कौन है मुत्तकी? अल्लज़ीना आमनु बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आख़िरति हुम यूक़िनून। मुत्तकी हजरात वो है कि जो लोग तुझ पे जो नाजिल हुआ और तुझे तेरे पहले जो भी नाजिल लोगों पर हुआ था उस पे ईमान रखते हैं, और आखिरत पे ईमान नहीं यकीन रखते हैं। और जब ये मुत्तकियों की सिफात पूरी होने आई थी तो पांचवी आयत में खुदा ने क्या कहा? उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये वो हजरात है कि जो हिदायत पा चुके, ये वो हजरात है कि जो कामयाब।
1: नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
0: मौजू क्या है हमारा? कामयाबी ना। खुदा ने कहा ये वो लोग है, वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब लोग है कि जो तंग दस्ती हो या खुशहाली हो अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार है। अब देने किसको होता है? जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जिसको फकीर कहते हैं, जिसको मिस्कीन कहते हैं, जो ज़रूरतमंद होता है, जो माशरे में छोटा इंसान होता है। आपको पता है नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

या देने की बात आती है तो किसको दिया जाता है? फ़कीर, मिस्कीन, तंगदस्त, हाजतमंद या मोहताज, जो छोटे लोग होते हैं। अब देखिए, ये छोटे लोग को हमने छोटा समझ रखा है। इनकी नज़र, कद्र, कीमत अल्लाह की नज़र में क्या है, ये सुनिए सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आपने कहा अला वमन इस्तखफा बिफकीर मुस्लिमिन। ऐ लोगों, याद रखना, जिसने भी किसी मुसलमान फकीर को इस्तखफाफ, छोटा समझा, उसकी इज्जत नहीं की, उसकी कद्र कीमत नहीं की। अला वमन इस्तखफा बिमुस्लिम फकीरिन फकत इस्तखफा बिहक्किल्लाह। गोया उन्होंने अल्लाह के हक को छोटा समझा। वयस्तखिफ्फु बिहिल्लाहु यौमल क़ियामा। और याद रखे कि जो माशरे के छोटे लोगों को छोटा समझकर उन पे जुल्म करते हैं, उनकी कदरदानी नहीं करते हैं, छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, उसी तरह से खुदावंद करीम क़यामत के दिन सबके सामने उनको छोटा साबित करेगा। माशरे के अंदर क्या है? अब देखिए, एक सवाल आपसे पूछूंगा, बड़ा जिगर चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं पहले ये बात कर लूं कि मुझे जो सवाल करना है उसका जवाब देगा कौन? ये सवाल का जवाब देने से न जन्नत मिलेगी न जहन्नम में जाओगे, लेकिन बात सच्चाई की है। जानना ये चाहूंगा कि इसमें जवाब सच्चाई वाला चाहिए। है कोई सच्चा इंसान यहाँ इस मजमे में जो मेरे सामने बैठा है कि जो कह दे मौलाना मुझसे पीछे पूछिएगा, मुझे डर नहीं, मैं सच्चा ही कहूँगा। है कोई? फिर सवाल करता हूँ, डरिए मत, आप जवाब दोगे इंशाअल्लाह। इंशा, क्या है आपका नाम? अब्बास, माशाल्लाह, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आठवां इमाम या आठवीं इमाम, इमाम रुदा अलैहिस्सलाम, आठवां इमाम ने कहा, मन लकिया फकीरन मुस्लिमन वसल्लम अलैहि खिलाफा सलामिही अलल गनी। जो इंसान, जिस इंसान की मुलाकात, आठवें इमाम का कौल है, जिस इंसान की मुलाकात किसी फ़कीर मुसलमान से हुई और उन्होंने उस फ़कीर मुसलमान को ऐसी सलाम की कि जो सलाम उससे अलग थी, जो सलाम पैसे वालों को की जाती है, तो उसका हश्र ये होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह सुबहानहु व तआला का गज़ब उस पर नाजिल होगा। इल्ला अय्यतूब, उस हदीस में था, जब तक वो तौबा ना कर ले। सवाल इतना है अब्बास, ये काम हमारे यहाँ होता है नहीं कि फ़कीरों को जो सलाम की जाती है, कमज़ोरों को जो सलाम की जाती है, मुलाजिमों को जो सलाम की जाती है, नौकरों को जो सलाम की जाती है, छोटे हजरात को जो सलाम की जाती है, वो अलग सलाम होती है, और पैसे वालों को सलाम, ओहदेदारों को सलाम, उलमा को सलाम, बड़े आदमी को सलाम, वो सलाम और ये सलाम में बहुत फ़र्क होता है। ये है हमारे यहाँ नहीं है ना? क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम सबको जन्नत चाहिए, और खुदा ने कहा जन्नत फौज है, कामयाबी है, और जन्नत में जाने वाले वही लोग होंगे कि जो खुदा के कमज़ोर बंदों की इज्जत करे। इसलिए इन्फाक की बात आई, इसलिए देने की बात आई। आठवें इमाम ने कहा जिसकी सलाम कमज़ोर लोगों को अलग होगी और पैसे वालों को अलग होगी, खुदा उस पर गज़बनाक होगा। मेरा हश्र क्या है? मौलाना सलाम सलाम आए, और एक बेचारा छोटा नौकर, मुलाजिम, गरीब आएगा, दूर से ऐसे कर डालो या तो मुंह से हो गया सलाम, मतलब अपना थूक भी इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? छोटा आदमी।

उसको सलाम करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, लेकिन पैसे वाला जब आता है, ओहदेदार इंसान जब आता है, तो उनको झुक झुक कर मैं सलाम करता हूँ। खुदा के बंदे, याद रखना, अगर छोटे हजरात की कीमत तेरी जिंदगी में नहीं है तो जन्नत के सपने भूल जा, तुझे जन्नत नसीब भी नहीं होगी। जन्नत में जाना है, जन्नत एक कामयाबी है, और जन्नत में जाने वाले कौन है? जो गरीब हजरात, कमज़ोर हजरात, फ़कीर हजरात, छोटे हजरात की कद्र कीमत करते। आप ये मत कहिएगा कि ये सब मैं जोश में पढ़ रहा हूँ, अभी कुरान की आयतें इतनी पढ़ूंगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपको क्या लगता है मैं यहाँ खेलने आया हूँ? ये सब बातें खिताबत के तौर पर नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी कौम सुधरे। अपनी कौम के अंदर ऐसी बातें डल चुकी है, लोगों ने डाली है, कि जन्नत के लिए कोई मेहनत करने की नहीं, कोई कोशिश करने की नहीं, हमें किसी की परवाह नहीं, वो आके हमें बचा लेंगे। वो कह रहे हैं हमारे पास भी खुदा की तरफ से कोई बरात जमानत नहीं, और तुझे किसने जमानत दे दी? तुझे इतना इंश्योरेंस जमानत किसने दे दी? या खुदा कदम कदम पर जन्नतियों के लिए सिफात बयान कर रहा है, जन्नती के लिए जिम्मेदारियां बयान कर रहा है, जन्नतियों के लिए सिफात को, जवाबदारियों को, आमाल को बयान कर रहा है, और मुझे कुछ करना ही नहीं और जन्नत मेरे बाप की जागीर हो गई है। हाँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए कुरान मजीद की तरफ। खुदा ने क्या कहा? सूरह दुहा, कुरान मजीद का 93वां सूरह, आयत का निशान है 10, चैप्टर 93 वर्स नंबर 10। बहुत सी आयतें, 9 भी खोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फअम्मल यतीमा फला तक़हर, 9, वअम्मस साइला फला तन्हर। ए मेरे हबीब, यतीम, फअम्मल यतीमा फला तक़हर, ए मेरे हबीब, यतीम के साथ तखर, सुख सख्त ना नहीं होना। वो अम्मा साइला फला तनहर, और सवाल करने वाले को कभी झिड़कना नहीं। नबी को कहा जाता है, और मैं अपने आप को मुसलमान, मोमिन, मुत्तकी, और ऊपर जाके जन्नत मेरे बाप की जागीर। खुदा ने कहा फअम्मल यतीमा फला तखर, वो अम्मा साइला फला तनहर। और आयतें चाहिए, सुनिए, सूरह माउन, कुरान मजीद का 107वां सूरह, चैप्टर 107 वर्स नंबर 1, 2, 3, पहली दूसरी तीसरी आयत। खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं भी पढ़ सकता है सूरह माउन? पहली तीन आयत पढ़, यल्ला मुझे थोड़ा सांस मिले। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले, सॉरी, तो बस। हाँ, खुदा ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ए मेरे हबीब, क्या तूने देखा, उस आदमी को देखा जिन्होंने कयामत के दिन को छुटलाया? और दीन का लफ्ज़ है, मतलब पूरे दीन, मजहब, कयामत के दिन को जिसने झुटलाया, क्या तूने उसको देखा? वो कयामत के दिन क्यों झुटलाता था? क्यों खुदा ने उसको कयामत के दिन का झुटलाने वाला कहा? अलम तरा, क्या युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कौन था वो? फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, जो यतीम को छोड़ देता था, वला यउद्दु अला तामिल मिस्कीन, वो गरीब फकीर मिस्कीन को खिलाने पर भी आमादा नहीं था। ऐ मुसलमान, अगर तूने माशरे के छोटे हजरात पे जुल्म किया, अगर माशरे के छोटे हजरात की कदर नहीं की, तो जैसे अभी बोला जन्नत के सपने भूल जा, क्योंकि ये सूरह माउन है। उसके बाद खुदा ने क्या क्या कहा है? नमाज वेल की बात आई ना, कि ये नहीं आई, मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले खुदा ने क्या कहा है कि कमज़ोर लोगों की मुझे इज्जत करनी है। अगर ये काम

नीचे से कोई मिट्टी न गिरे। फिर इमाम ने अपनी मुट्ठी को थोड़ी खोली और थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे गिरने लगी। इमाम ने कहा वकाना बैन ज़ालिका कवामा, इन दोनों के दरमियान जो है ना, यानी मुसलमान मुत्तकी अल्लाह का बंदा वो होता है जिसकी मुट्ठी हमेशा थोड़ी तो खुली होती है कि उसमें से इन्फाक गिरता हमेशा हमेश के लिए रहे। ये होते अल्लाह के बंदे, ये होते हैं मुत्तकी हज़रात। अब दो आयतें कुरान की पढ़ी, अब सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की एक हदीस पढ़ता हूँ। आपने कहा ले अहलिल जन्नत अरबा अलामात, ले अहलिल जन्नत अरबा अलामात, जन्नतियों की चार अलामात है, चार निशानियाँ हैं। इसके अलावा भी हो सकती है लेकिन जो जन्नत में जाते हैं उनमें ये होता है, ये सिफतें होती है। छठे इमाम ने कहा ले अहलिल जन्नत अरबा अलामात, एक वजहुन मुनबसत, हंसता हुआ चेहरा होता है किसका, जन्नती का। दूसरा व लिसानुन लतीफ, उसकी जबान जो है ना वो मीठी होती है। और यहां मेरी जबान क्या है, कैंची की तरह चलती है, जो भी आया सामने कट गया। जन्नती कौन है, व लिसानुन लतीफ। तीसरा व कल्बुन रहीम, रहम दिल दिल, कल्बुन रहीम। जन्नती की तीसरी निशानी है जिसके पास ऐसा दिल हो, गुजराती में कहवाए दया करवा वारू हृदय, दया करवा वारू दिल, ऐसा रहम दिल इंसान जो होता है वो मुत्तकी। नहीं, जन्नती की तीसरी निशानी। चौथी क्या होगी आप बयान कीजिए। हाँ, मैंने कहा था एक नाटक शुरू होगा, नाटक को वापस याद कीजिए, वहां से आपको हिंट मिलेगी। वापस याद दिलाऊं, नबी करीम की आयत क्या थी, वो ऐसे चीजों को नहीं करना खुदा ने कहा और ऐसे भी नहीं करना, ये पहली आयत थी। छठे इमाम ने क्या कहा, ऐसे ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल पकड़ के नहीं रखना, उसके बीच में रखना। कुछ दिखता है आपको इस ड्रामे में, क्या दिखता है, हाँ? मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, आपको मुझ में क्या दिखता है, दोनों आयतों में कोई एक चीज थी जो दोनों आयतों में थी क्या, हाँ? नहीं, दोनों आयतों में तज़किरा हाथ का था। यह है कुरान, लेकिन हमें सोचने की आदत ही नहीं कि क्या चीज है कुरान के अंदर। वहां पर हाथों को गले तक बंद रखने की बात हुई थी, हाथों को पूरा खोलने की बात हुई थी, यहाँ छठे इमाम ने भी हाथों से इस आयत की तशरीह की। तो अब ज़रूरी है ना कि जहाँ जन्नत की बात हो वहाँ कुछ ना कुछ हाथ की बात आएगी। क्या आएगी वो आप पढ़िए, मैं सलवात पढ़वाता हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, बोलिए। एक ने कहा सखी हाथ, दूसरे को कुछ जहन में आता है हाथ के सिलसिले में, बोलिए इन्फाक। और कुछ, वापस हदीस पढ़िए, देता हूं ले अहलिल जन्नत अरबा अलामात, जन्नतियों की चार निशानी है। एक वजहुन मुनबसत, मुस्कुराता हुआ चेहरा, व लिसानुन लतीफ, अच्छी अदब वाली मिठी जबान, व कल्बुन रहीम, ऐसा दिल को जो रहीम हो, रहम करने वाला हो। और चौथी बात छठे इमाम ने कहा वह यदुन मुअतिया, देने वाला हाथ, अता यदुन मुअतिया, देने वाला हाथ। अजीजा ने मोहतराम, आज कामयाबी अगर हासिल करनी है तो जन्नती बनना पड़ेगा, और जन्नती मुत्तकियों के लिए, और मुत्तकी वो होता है कि जो माशरे के छोटे हजरात की कदर व कीमत करे और खर्च करना अल्लाह की राह में जानता हो, तब जाके कामयाबी मिलेगी। करबला वाले के हमारे सामने नहीं, घर जाके पढ़

पढ़िएगा चैप्टर 9 वर्स नंबर 20, घर जाके पढ़िएगा चैप्टर 9 वर्स नंबर 88। खुदा उसमें बयान करता है ये सब कामयाब लोग हैं। वहां पर किसकी बात होती है? जिन्होंने अपने माल को अल्लाह की राह में दिया। दोनों आयतों में पढ़िएगा आप, लेकिन साथ में कुछ और बात आई है, जो अल्लाह की राह में अपने नफ्सों को भी कुर्बान करते हैं वो कामयाब लोग हैं। करबला में क्या हुआ? आज एक करियल जवान की बात करनी है ना, एक करियल जवान की बात, क्या बयान करूं, कहां से मसाइब को शुरू करूं। बस इतना समझ लीजिए कि आज हुसैन मौला की आंखों की ठंडक जाने वाली है, आंखों की बिनाई कमज़ोर होने वाली है। क्यों? तारीख में मिलता है कि हज़रत अली अकबर को इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले मौला ने अगर किसी को भेजा है तो अपने लाल अली अकबर को। रात की बात हो रही थी, बस हुसैन ने इतना कहा था कि बेटा तू माँ बहनों से इजाज़त ले लेना, कल जंग का दिन है। मेरे उस्ताद मौलाना सादिक हसन पढ़ा करते हैं, का शब आशूर की रात थी, अली अकबर के सीने में एक सवाल था कि मैं फूफी ज़ैनब से इजाज़त कैसे लूँ, क्योंकि अली अकबर को जनाब ज़ैनब ने पाला था। मौलाना कहते हैं कि शाम गरीबा की रात नहीं, शब आशूर की रात अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में गए और अपना सर मुबारक जानुए जनाब ज़ैनब में रखा, और जनाब ज़ैनब कंगी कर रही थे, उसमें जनाब अली अकबर ने फूफी अम्मा से पूछा, कहा फूफी अम्मा एक सवाल है, कहा बेटा पूछो, कहा फूफी अम्मा क्या आपका मर्तबा ज़्यादा है कि दादी फातिमा जहरा का? जनाब ज़ैनब ने पूछा, कहा बेटा क्या पूछ रहे हो, मैं तो फातिमा की एक अदना सी कनीज़ हूँ। कहा बस फूफी जान, मैं आपका बेटा हूँ और बाबा हुसैन फातिमा के बेटे हैं, इसलिए क्या आप अपने बेटे को फातिमा के बेटे पे कुर्बान करोगे? बस यूँ समझिए कि अली अकबर ने जनाब ज़ैनब को लाजवाब कर दिया। गोया यूँ समझिए कि अली अकबर को मैदान या रन की या जंग की इजाज़त मिल गई। रोज़े आशूर नमुदार हुआ, एक वक्त वो आया कि हुसैन मज़लूम ने अली अकबर को भेजा और खुदा को कहा, खुदाया तू गवार है ना, अब मक्तल में वो जा रहा है जो तेरा हबीब था, उसका हम शक्ल था, गुफ्तार में रफ्तार में। बस अजादारो अली अकबर की विदाई हो गई, अली अकबर को घोड़े पे सवार कह लिए हो गया। उतने में अली अकबर ने कानों में क्या सुना कि कदमों की आहट आ रही है और छोटी सी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, जिसमें आवाज़ में यूं सुनाई देता है, महलन महला वलदी, बेटा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जाओ। अली अकबर ने सुना, अपने घोड़े सवारी से नीचे आया, कहा बाबा जान अरे थोड़ी देर पहले रुख्सती तो ले ली थी, अब क्या हुआ? कहा बेटा क्या बताऊँ, अगर तेरे पास तुझ जैसा एक जवान बेटा होता ना, तब जाके तुझे पता चलता कि ज़ईफ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। हाँ आज़ादारो, जनाब अली अकबर मैदान में गए, बहादुरी के साथ लड़ाई की, एक मोड़ वो आया, अली अकबर को बहुत प्यास लगी थी, खैमे की तरफ वापस आए और बाबा जान से पूछा, कहा बाबा जान हल मिन हल्लिल मशरब मिन सबीर, बाबा अगर कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए ना तो बाबा थोड़ी हिम्मत में इजाफा हो जाए। अजादारों आपको पता है ना, किसी शायर ने इस बात की मंजर कशी की है, शायर ने अपने कलाम अपने नौहा में किया है और कहा है, क्या मांगा अकबर ने पानी तो शब्बीर ने दे दी सूखी जुबा मुंह में फरजंद के, अरे मांगा अकबर ने पानी तो शब्बीर ने दे दी सूखी जुबा मुंह में अकबर के, उसने वापस जुबा खींच कहते हुए ऐसी सूखी जुबा।

पैराडाइम ऐसा चेंज हुआ है, अब आप लाख बोलते रहो ये फाशा है भाई, लेकिन उसके पास हमारे पास एक तावील है मौलाना, ये हमारा, ये हमारी एफर्ट्स हैं इनके साथ इंटीग्रेशन के लिए, ये हमने यूं सोचा हुआ है और ये कभी नहीं होगा। क्यों? सिर्फ हम लोग अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे होंगे, जो मुसीबत आएगी वो हम लोग अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे होंगे। और ये यहाँ पर वहाँ पर हर जगह पता नहीं कितनी दफ़ा हुआ है। अब मुझे आपकी खिदमत में चंद आयात अर्ज करनी है जो मैं एक दो दिन से सोच के आता हूँ कि मैं करूँगा और फिर मैं कहीं और चला जाता हूँ। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मुझे अपने इमाम की नुसरत करनी है और नुसरत करने

सही फैसले करने हैं। सही फैसले करने में जो सबसे बड़ी मेरी रुकावट बनी हुई है वो क्या है, वो ये कि मेरी कल्चरल शिफ्ट हो गई है, कल्चर मेरी शिफ्ट हो गई है। अब वो जो कल्चर जो शिफ्ट हुई है, ये जो शिफ्ट हुआ इसमें सबसे बड़ा जो कल्चरल प्रॉब्लम चेंज हो गया वो क्या था, वो था मेटीरियलिज्म, जो मैंने पिछली कई रिवायतों से आपको बार बार ये दिखाया कि देखो अल्लाह के नबी ने हमसे ये कहा था कि ये होने वाला है। वो जो ये जो शिफ्ट हुआ, मटेरियलिज्म आया हमारे पास। अब मैं सिर्फ एक दो जुमले में इसको पढ़ूँ और फिर वो आयत की तरफ आता हूँ। कोई मुझसे कहे मौलाना क्या चाहते हो, दुनिया में नहीं रहना है? किसने कहा कि नहीं रहना? दुनिया में रहना है, दुनिया के लिए नहीं रहना है, रहना आखिरत के लिए। दुनिया में रहना है, चैलेंज तो यही है। खुदा ने चैलेंज यही दिया, वरना वो क्या, वो नहीं कहता कि मसलन तुम पहाड़ों पे जाओ, गारों में जाओ। अल्लाह के नबी ने जैसे ही सुना कि कुछ लोग दूर चले गए, फौरन तशरीफ लाए मिंबर के ऊपर, रवायत के बकौल अबा लटकी हुई थी, परवाह नहीं की, और मिंबर पे आकर कहा कि जो शहरों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों में जाएगा ये मुझ में से नहीं है। शहर में रहना है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया के लिए नहीं रहना है। अब दुनिया के लिए नहीं रहना है तो क्या करना है? नंबर एक, इसको मैं भी आयतों से दिखाऊंगा आपकी खिदमत में। पहली बात, अपनी तमाम जिंदगी का हम गम दौलत मत बनाओ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी बात है। कद अफलहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाबा मन दस्साहा, 11 कस्मों के बाद आया, मैं तकरार नहीं करूंगा। पहली बात, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेन ऑब्जेक्टिव है। खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, ये अहसन तकवीम है। दूसरी बात, जो कुछ दुनिया से मिल रहा है, जो कुछ दुनिया से मिल रहा है, एक सेकंड के लिए मत सोचना मेरा है। खुदा ने कुरान करीम में जहां कहीं कहा है सदका दो, हमेशा गारंटेड, हमेशा कहा है जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से दो। अब ये बहुत लतीफ़ एक नुक्ता है, वो क्या है, जो आदमी ये समझ रहा है ना पैसा उसका है, इसका सदका भी कबूल नहीं है, क्योंकि खुदा ने कुरान में हमेशा कहा है उस पैसे में से देना जो मैंने दिया है। इसका मतलब है अगर एक आदमी कह रहा है ये पैसा मेरा है, ठीक है, वो खुदा की हाकिमियत को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है इस मामले में, कह रहा है मैंने अपनी कोशिश से कमाया है, ठीक है, इसका मतलब है इसको सदका देने से पहले सबसे पहले तो ये करेक्शन करनी पड़ेगी कि पैसा मेरा नहीं है। क्यों? अगर ये पैसा अपना समझ रहा है ना तो सदका दे के अल्लाह पे एहसान जमा रहा है। और खुदा मुताल ने कुरान करीम फरमाया कि ला तुबतुलू सदकातकुम बिल मन वल इदा, ये मिन्नतें जमा कर अज़ियत देकर अपने सदकों को बातिल मत करो। किस पे ये, किस पे मिन्नत रख रहा है? ये मिन्नत रख रहा है खुदा पे, सही है। खुदा कह रहा है तुमने बंदे पे भी मिन्नत रखी ना कि मैंने तुझे दिया है, ये भी गया, तुम तो मुझ पे मिन्नत रखने आ रहे हो। बंदे पे भी एहसान किया ना कि मैंने तुमको दिया था। अभी बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, हाँ ज़्यादातर होते हैं ऐसे, कम होते हैं जो नहीं होते, तो वो क्या कहते हैं, मसलन कहीं पे देते हैं तो सामने वाले से ये तवक्को रखते हैं कि वो क्या है, ये मेरे मोहसिन है, मैंने दिया है तो मैंने इस पे एहसान किया है, तो ये मेरे मोहसिन है। तो मैंने देखा है कि वो सिटिंग्स में कहीं बैठे होंगे तो वो उसकी तरफ यूं करके देख रहा होगा कि वो कहेगा ये मेरे मोहसिन है। यही जो तुमने एक्सपेक्ट किया ना कि ये मेरे लिए कुछ करे, अब ये तुम्हारी और उसके दरमियान एक ट्रांजैक्शन हुई है, खुदा के साथ नहीं हुई है, ये तुम्हारी उसके दरमियान एक डीलिंग है। तुमने उस पर एहसान किया, उसने तुम्हारे एहसान को पब्लिकाइज कर दिया। और माजरत के साथ अर्ज करूँगा, ये जो हम और आप कर रहे हैं आजकल, आजकल वो जनाब अली वो लाउड स्पीकर पे अनाउंस होगा, इन साहब ने इतने हज़ार डोनेशन दिया था, द डील हैज़ बिन डन, ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड, नथिंग लेफ्ट फॉर हेयर आफ्टर। तुमने जो दिया था उसके रेसिप्रोकल मिल चुका है, डील पूरी हो गई है, बे और शरा कम्प्लीट है, तो अब आखरत के लिए क्या बचा है? आखरत के लिए बचाना है तो क्या करें? क्यों अनाउंसमेंट करवा रहे हो? क्या नहीं सुना था अजदाद से, तुम्हारे मेरे बड़े कहते थे इस हाथ को दो इस हाथ को पता ना चले,
तुम तो पूरी

दुनिया को पता चलवाते हो और लाउड स्पीकर पे नाम सही नहीं लिया ना तो बाद में चीखेगा मैं पैसा वापस ले लूँगा, मेरा नाम सही नहीं लिया था। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक क्यों की तुमने? ये सब मेरे साथ हो चुका है, ये मैंने देख लिया है सभी मंबर गांव के अंदर। अब मुझे बताओ, इस पैसे से, इन एक्टिविटीज से रूहानियत बढ़ेगी? फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि कल्चर का प्रिज्म अपसाइड डाउन है। कोई है नहीं जो कहे ये भाई ये गलत हो रहा है, इसको खामोशी से करो, कोई नहीं बोलेगा। ये मुश्किल आ गई है। तो अभी क्या है? नंबर एक, दुनिया के लिए नहीं पैदा हुए हो। इतनी अभी हर रोज यही हो रहा है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। बहुत अजीब एक कौल है अल्लाह के नबी का, इन्नमा खुलिक तुम लिल बका ला लिल फना व खुलिक तुम लिल आखरा ला लिल दुनिया व इन्नमा तुन खलून मिन दारिन इला दारिन। अरबी मैंने इसलिए बोल दिया, कभी कोई सुन ले तो तर्जुमा कर ले, मैं बाद में कभी करूँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन मैं आता हूँ आयतों के ऊपर। उसके आने से पहले ये रूल्स सेट करने हैं। नंबर एक, दुनिया के लिए खल्क नहीं हुए हो, आखरत के लिए खल्क हुए हो। दुनिया में जो कुछ तुम्हें दिया है वो खुदा ने दिया है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है ये। उसमें से खुदा कह रहा है इस जगह पर खर्च कर सकते हो, इस जगह पर खर्च करना वाजिब है, तुम्हारी नहीं चलने वाली यहाँ पर। तो अगर सदका देना है तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा पैसा मेरा नहीं है, खुदा का है। इससे पहले सदका नहीं कबूल होता है। मैंने दो तीन आयतें दे दी आपकी खिदमत में, इसीलिए कनेक्ट करवाई हैं सारी, ठीक है। और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात ये है कि जिस दिन ये लगे कि दुनिया एक सही फैसले में बैरियर है, ख़त्म करनी पड़ेगी, उसी दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी, राइट डिसीजन। और अगर अटैचमेंट बना ली दुनिया से, नहीं छोड़ सकेंगे, तो ट्राई करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ के देखो, ट्राई करने के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के देखो कि भाई क्या होता है। छोटी चीज़ें छोड़ के देखो, तो कभी किसी चीज़ पे थोड़ी सी सख्ती डाल के देखो कि मसलन क्या होता है। बोलो हराम है वाजिब है? नहीं, हराम वाजिब का मसला नहीं है ये, बिल्कुल वही मैराथन वाली कहानी है। ओवर नाइट 40 किलोमीटर कोई नहीं दौड़ सकता, थोड़ा थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, फिर दौड़ेगा 40 किलोमीटर। तो इसको टेस्ट करने के लिए मुझे आयतें पढ़नी है आपकी खिदमत में। सूरह कसस से दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। छः आयतें हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है और मुझे आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। سورة قصص آیت نمبر 76 ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، خدا نے متعال نے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ اس بندے کا برا نہیں ہے۔ اگر خدا نے متعال ایک قوم کو ایک نبی سے کنیکٹ کر رہا ہے، اس کو نسبت دی ہے، پھر کہا یہ اس میں سے تھا، اس کا مطلب ہے اس کے نبی سے تعلقات برے نہیں تھے، کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ تھی اس کی قوم موسیٰ میں سے۔ یہ تھا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، اس نے قوم کے خلاف بغاوت کی، صحیح ہے؟ تو اس نے آرمڈ اسٹرگل کی اپنے قوم کے خلاف؟ نہیں، کوئی آرمڈ اسٹرگل نہیں کی، تو خدا نے کیوں کہا اس نے بغاوت کی؟ اس نے کلچر میں بغاوت کی ہے، اس نے قوم کی کلچر سے وائلیشن دکھایا ہے۔ قوم کا کلچر میٹیریلزم نہیں تھا، اس نے انٹروڈیوس کروایا، اس نے بغاوت کی ہے۔ اب خدا اس معاملے کو فرما رہا ہے یہ بغاوت ہے۔ تمہارے اجداد ایک راستے پہ چل رہے تھے جو صحیح راستہ تھا، تم نے اپنے اجداد کے راستے کو کیوں توڑا؟ اور میں کمیونٹی کے حساب سے اگر بولوں نا، تو میں آپ کو گارنٹی سے بول رہا ہوں، دیکھو ابھی سے 50-60 سال گزرے ہیں، 50-60 سال پہلے کمیونٹی کے اندر جو موسٹ ریسپیکٹڈ لوگ تھے وہ ایلڈرز اور متقی تھے۔ پیراڈائم شفٹ ہوا، اب جو موسٹ ریسپیکٹڈ ہوں گے وہ پیسے والے ہوں گے۔
یہ کم لوگ جرات

0: आप कोई सवाल करें, इसमें मौलाना फसाद ज़मीन में कहाँ हुआ? वो फासिद था, वो करप्ट था, इसने ज़मीन में क्या करप्शन फैलाया? ज़मीन में करप्शन ये था कि ये कल्चर को प्रमोट करेगा। तो क्या हुआ, मैं चेंज जल्दी से बोलता हूँ, जैसे आप इस कल्चर को प्रमोट करोगे ना कि रिस्पेक्ट की बेस पैसा है। अब मुझे एक बात बताओ, इंसान को रिस्पेक्ट चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। और उसे पैसा नहीं मिला फिर तो रिस्पेक्ट भी गई, तो फिर वो कहेगा अब राइट से आए या लेफ्ट से आए मुझे पैसा चाहिए, क्यों? मैं रिस्पेक्टफुल रहना चाहता हूँ। ये कल्चरल शिफ्ट है। रिस्पेक्ट की बेस पैसा नहीं होनी थी, तुमने रिस्पेक्ट की बेस पैसा की है, दिस इज फसाद फिल अर्थ। ये ज़मीन में फसाद बर्पा कर दिया। और ये मैं अपनी आंखों से पाकिस्तान की कल्चर को 70s में शिफ्ट होता देख चुका हूँ। ये कैसे शिफ्ट हुआ है? हमारी जनरेशन में, मेनली हमारी जनरेशन में शिफ्ट हुआ है ये, इसको हमने देखा है। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ये जो कल्चरल शिफ्ट है ये फसाद है। ला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, खुदा फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। देखो, खुदा गुनाहगार तोबा कर ले पसंद करता है, फसाद बर्पा करने वालों को पसंद नहीं करता। एक गुनाह किया था, तोबा कर लो, वापस आओ, ज़मीन पे फसाद बर्पा करो। खुदा कहता है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इसकी खुदा के पास कोई गुंजाइश नहीं है, वापस आए। अच्छा, उसके बाद कौला, अब कारून ने जवाब दिया है। थोड़ी सी गर्मी भी है और थोड़ा सा बातें भी थकाने वाली हैं, ठीक है। कहानी मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त बहुत ही कम है, ठीक है। और उसके बाद नस्ल कार्टून देखी हुई है, इसके लिए फोकस करना आसान काम नहीं है, सही, मुझे मालूम है। सब लोग स्क्रीन पे बहुत चले हुए हैं, तो जो स्क्रीन पे चली हुई ज़्यादा कौम होती है, जिसने स्पेशली वीडियोज़ ज़्यादा देखी होती हैं, उसके लिए फोकस करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वहाँ फ्रेम हर सेकंड में चेंज हो रहा होता है। अब यहाँ तो 50 मिनट एक ही फ्रेम चल रहा है। अब इसका हल हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग कहते हैं मौलाना थोड़ा सा ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट भी डाल दो। ओ भाई, अगर मैं ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट डालने में आ गया तो मैं मेंबर पे कहाँ बैठा हूँ? फिर उसके बाद लोगों ने क्या कहा, कहो मौलाना ठीक है मेंबर पे मत बैठो, एक टेबल चेयर पे बैठ जाओ, वहाँ से बैठ के प्रेजेंटेशन दो। तो मैंने कहा अगर मैं ये करूँगा तो फिर इसका मतलब क्या है, मैंने 1400 ईयर्स का प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, मैं रिस्क नहीं लूँगा। प्रोजेक्टर चलाना मुझे भी आता है, लेकिन ये मुझे पता है कि किसी प्रोजेक्टर ने 1400 साल बाकी नहीं रहना है, इस मेंबर ने बाकी रहना है। हाँ, मुझे मेंबर पे ही रहना है, सही है। अब तुम इसमें कहो आप इफ़ेक्ट डालो, नहीं मैं इफ़ेक्ट भी नहीं डालूँगा, सही है। मैं जो काम करूँगा वो ये कि भाई मैं, हम 1400 साल से इसकी एश्योरेंस लिए हुए हैं, ठीक है, अपनी नस्ल में इसका रिस्क नहीं लूँगा। तो किसी को चले तो चले, नहीं चलता ना चले, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ जो मैं रिस्क लूँ कि बाद में मेरी जनरेशन मेरी गर्दन पकड़े कि तुमने इसको चेंज किया था। मैं नहीं करूँगा, यहीं पे थे हम यहीं रहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो यहीं पे रहते हुए मरेंगे इंशाअल्लाह, हमें यहाँ पे रहना है। तो ठीक है, अब आप लोग अपने फोकस को सही करो, कर रहे हैं फोकस, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप चूँकि थक जाते हैं तो मैं आपकी थकावट को दूर करने के लिए आपको रिफ्रेश करता हूँ, ऐसे कि भाई ऐसे सर
1: हमिल।
0: अब देखो, कौम की कल्चर बुरी नहीं है, कौम ने अच्छी चीज़ें कही हैं, कुरान करीम ने कौम से कोट किया है, इसका मतलब है सोशली चीज़ अच्छी थी। एक बंदा गड़बड़ कर रहा है, इसको कहता है ये बागी कर रहा है, ये बगावत कर रहा है। अब वो बगावत करने वाला अपनी कल्चर को पेश करता है। कौला, पहला पॉइंट, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मैंने अपनी नॉलेज से कमाया है। लुक एट द एरोगेंस, खुदा तुम कह रहे हो वब्तगी फीमा अताकल्लाह, अल्लाह ने मुझे दिया, नहीं मैंने खुद कमाया है, ये मैंने कमाया है, मैं आया था लंदन में मिलियनर बिलियनर बनाऊं, किसकी दीवी ताकत से बने हो? भूल गए तुम एक गंदा पानी थे। क्यों खुदा बार बार याद दिलाता है तुम लोग गंदा पानी थे?

नहीं मांगते क्या? قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون काश हमें भी वो मिल जाता, काश हमें भी वो मिल जाता जो कारून के पास है. खुदा तो बीच में डाल लेते, सब गायब हो गया. अब सीधा कारून रह गया, यानी तमाम चीज़ों का स्टैंडर्ड कारून, अल्लाह, आखरत, सब ख़त्म. काश हमें भी वो मिल जाता जो कारून को मिला. इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, उसकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं, इसके पास बड़ा बड़ा इसके पास काम है, बड़ा इसका स्टेटस है. अच्छा, पैसे की बेस पे स्टेटस भी दे दिया, सब खत्म. एक आदमी क्या पैसा लेकर आया, सबके दिलों में जो शैतान छुपा हुआ था वो बाहर आ गया. अब सब वहीं भाग रहे हैं. जब ये वहां भाग रहे थे, अब वो जो आखरत वाले थे वो भी आए. खुदा ने आखरत वालों की तारीफ क्या की है, बहुत अजीब है ये. अब ये नहीं कहा, वो तो कहा कौलल्लज़ीना युरीदून अलहयात अद्दुनिया, जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी चाही थी उन्होंने ये कहा. अब ये नहीं कहा जिन्होंने आखरत की ज़िंदगी चाही थी उन्होंने ये कहा, नहीं. क्या कहा? कौलल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनके पास इल्म था उन्होंने ये कहा. बाकी कौन है? जाहिल हैं, डिग्री में PhD हैं, लेकिन असल में जाहिल हैं. क्यों? दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब है जाहिल हैं. ये इल्म की डेफिनेशन है. ये हमने नहीं सोचा ऐसा. अब जाहिल हो आलिम समझ लो. मुमकिन है कोई शख्स मिंबर पे बैठ के जाहिल हो. कौन? वो जो मिंबर पे बैठ के दुनिया के पीछे भाग रहा है. और मुमकिन है कि कोई शख्स बहुत बड़ा PhD हो, फला हो, फलू हो, आइंस्टाइन हो, अपने आद दानिश में IQ लेवल फला हो, सब का सब जाहिल है. क्यों? सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहा. ये सब पॉसिबल है. ये खुदा ने जो डिवीज़न की है उससे नज़र आ रहा है. कौल लजीना ऊतुल इल्म, जिनको इल्म मिला उन्होंने ये कहा. वैलकुम, बदबख्त हो गए हो तुम लोग. तुम लोग बदबख्त हो गए हो, तुमने अपनी किस्मत ख़राब कर ली. क्यों? तुमने खुदा से नाता तोड़ लिया. तुम एक फासिद इंसान के दुनिया दिखाने के ऊपर मर मिटे हो. वैलकुम, क्या हो गया तुमको, बदबख्त हो गए हो. वैलकुम सवाब अल्लाह खैरुन लिमन आमना व अमिला सालिहन, जो अल्लाह सवाब देता है ईमान लाने वाले और अमल सौले करने वालों को, वो इन सबसे बहुत बेहतर है. तुम क्या हो, दो दिन की दुनिया पे मर मिट रहे हो. वही लखुम, बदबख्त हो गए तुम लोग. जो खुदा सवाब देता है वो खैर है. किसके लिए सवाब देता है? लिमन आमना व अमिला सालिहन. ये किसको मिलता है? वला युलक्काहा इल्ला सबिरून, ये उनको मिलता है जो दुनिया की जर्क बर्क के ऊपर सब्र करते हैं. उनको नहीं मिलता जो दुनिया को चमकता देखते हैं भागना शुरू कर देते हैं. सब्र करते क्यों? दुनिया के पीछे भाग रहे थे. अल्लाह के नबी से कल फरमान मैंने अर्ज किया था, तुम दुनिया के पीछे भागोगे जलील होके भागना पड़ेगा. अब देखो, कुछ फंडामेंटल गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में वो जिल्लत उठानी पड़ती है. फिर हमसे कहते हैं मौलाना अब क्या करें. अब ये आपका सवाल बहुत देर कर दिए है. वही लकुम, अल्लाह का सवाब बेहतर था. वला युलक्काहा इल्ला सबिरून, ये मकाम सिर्फ उनको मिलता है जो सब्र करते हैं. सब्र नहीं करोगे कारून के साथ खड़ा होना पड़ेगा. फिर खुदावंद मुताल फरमाता है, फ़कसफ़ना बिही व बेदार हिल अर्ज, हमने उसे उसके घर समीत ज़मीन में गाड़ दिया. अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये अल्लाह की रहमत थी या क्या था? ये रहमत थी, कौम के लिए रहमत थी. क्यों? उसने सिंबल ऑफ फसाद को ज़मीन में गाड़ दिया. खुदा ने मुताल एक जगह फरमाता है, वक़ता नदाबर कौमल्लज़ीन ग़लमू, जो कौम जुल्म कर रही थी ना उसको हमने जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया. उसके बाद फरमाता है, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं. क्यों? अगर वो उखाड़ के नहीं फेंकता ना तो सब इसी के पीछे भाग रहे थे. अगर खुदा इसको ज़मीन में ना गाड़ता तो कौम तो गई थी फिर. फ़कसफ न बही व बेदार हिल अर्थ, उसको उसके घर समीत ज़मीन के अंदर गाड़ दिया. फ़मा क्या नमिन फ़ातिनसूरू नहमिन दून ला वमा क्या नमिन अलमुनतसरीन, न कोई लश्कर आया उसको बचाने के लिए, ना वो ख़ुद अपनी मदद कर सका. जब अल्लाह का हुक्म आता है तो ज़मीन

मिट्टी, पानी, हवा सब खुदा का लश्कर है। तुम खुदा के लश्कर से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है ना, ये खुदा का लश्कर है। सारे खून को दिमाग में जमा करेगा, वहीं फाड़ देगा। ये खुदा का लश्कर है, बाहर से फायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसे। खुदा का लश्कर है, जिस ज़मीन पे खड़े हो उसके कहकर खुल जाए, ख़त्म। जो खून दौड़ रहा है उससे कहकर न दौड़े, ख़त्म। वो क्यों फायरिंग करे, उसको क्या ज़रूरत है। खुदा उन्हें मुतालबा फरमाते, हमने ज़मीन में गाड़ दिया, कोई लश्कर आया उसकी मदद करने, अपनी मदद कर सका कुछ नहीं। उसके बाद फरमाया, और अब आखिरी जुमलात हैं, वह अज़बहल्लज़ीन तमन्नौ मकानहु बिलअम्स यकूलून, वो जो कल तक कह रहे थे इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये बड़े मकाम वाला है, काश हमें भी वो मिल जाता, अब क्या बोल रहे हैं, वैकअन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा मिन इबादिही। हाँ, अब हमें समझ में आ गया कि खुदा ही होता है जो सबको रिस्क देता है। अच्छा, कल तुम कह रहे थे या लैतलना मिस्लमा उतिया क़ारून, काश हमें वो मिल जाता जो क़ारून को, उस वक्त खुदा याद नहीं आया था, जब अज़ाब देख लिया। ये भी अच्छी बात है कि कम से कम अब अज़ाब देख के याद आ गया। अब क्या कह रहे हैं, वैकअन्नल्लाह, हाँ अल्लाह है जो यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा मिन इबादिही, अल्लाह है जो रिस्क तकसीम करता है। पहले कहा था जो क़ारून को मिला वो हमें मिल जाए, उस वक्त अल्लाह का याद भी नहीं किया था, अब अल्लाह भी याद आ गया, अब ये भी याद आ गया कि रिस्क है, और अब ये भी याद आ गया कि वो अपने बंदों को देता है। वो रिस्क कौन सा है, अब इनको पता है कि वो रिस्क इल्म है, क्योंकि जिस चीज़ ने डिफ्रेंशिएट किया था वो क्या था, इल्म। आपको समझ में आ गया कि पहला रिस्क कौन सा है। पहला रिस्क दौलत नहीं है, पहला रिस्क इल्म है, वो इल्म जिसमें गलती नहीं होती। कल मैंने रिवायत पढ़ी थी, वो इल्म जिसमें जहल नहीं होता, ये रिस्क है। वैकअन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा मिन इबादिही वयक़दिर लौला अमन्नल्लाह अलैना लखसफा बिना, अगर खुदा ने हम पे रहम ना किया होता तो हम भी आज ज़मीन में गड़ गए होते। वैकअन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, खुदा काफिरों को मोहलत नहीं देता है और फलाह नहीं देता है। आखिरी जुमला, तिल्का दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्द वला फसादा, ये आखरत की दुनिया, आखरत का घर खुदा ने उसके लिए रखा है जो ज़मीन पे न बरतरी देखता है न फसाद बर्पा करता है। जो अपनी बरतरी ढूंढने की कोशिश करे उसके लिए आखरत नहीं है। बहुत आपको मैंने ज़हमत दी, खुदा आपकी सलामती में इजाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह चंद जुमले मुझे मसाइब के ज़ाहिर बहुत इंपॉर्टेंट अर्ज़ करने, ये आयात में पता नहीं कब से अर्ज़ करने के लिए बेताब था, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया, लेकिन इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 76-83 सूरह कसस, मैंने आपके सामने पूरी आयतें इसलिए पढ़ी ताकि आप अच्छी तरह देखने देखें कॉन्सेप्ट किस तरह इसमें से निकल निकल के आ रहे थे, कौन कौन सी चीज़ों को आपने मिलाना है, रिस्क की डेफिनेशन इल्म कैसे हो गई, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। परवरदिगार आपकी सलामती में और इजाफ़ा फरमाए, इंशाअल्लाह आपके हुब्बे हुसैन में और इजाफ़ा फरमाए, और इंशाअल्लाह हम सबको उनके वारिस की खिदमत की सआदत नसीब फरमाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपके पास अब इंसान जब इन चीज़ों को देखता है तो सोचता है मौलाना होगा क्या हमारा, हम एक ऐसी कल्चर में फंस गए, कब तक हम इससे लड़ेंगे, हम इस लड़ाई में जीतेंगे कैसे, और हमें ये भी पता नहीं चल पाएगा कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम वही कर रहे होंगे जो दुनिया कर रही है, तो ये सब कैसे होगा। तो अगर किसी ने आपके दोस्तों में से किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैंने उससे कहा कि देखो बहुत बड़ा एक मामला है, वो क्या है, ऐसी जगह से कनेक्शन ले लो जहाँ से कभी कोई गुमराही नहीं आ सकती है। अल्लाह के नबी ने अपने नवासे को मिसबाहुल हुदा कहा है, अगर सिर्फ मिसबाहुल हुदा कहते ना तो मैं कहता ये मिसबा है जो लाइट दिखाता है, नहीं पहले क्या कहा, सफीनतुन नजात, कहा तुमको लाइट नहीं भी नज़र आ रही हो ना तो तुम सिर्फ़ एक करना, मेरे हुसैन के सफीने में बैठ जाना, बाकी मेरा हुसैन ले आएगा।

में आ गया हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इतना जज्बाती हो जाऊँ कि मैं आपके सामने मसाइब ढंग से ना पढ़ सकूँ। आप रोने के लिए आए हो, खुदा की कसम खा रहा हूँ मुझे रुलाना है। मुझे इस पर ये नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता, ये मेरा हदफ है, मेरा मकसद है, मुझे करना। आप सईद शोदा की मोहब्बत ने करा, बगैर मोहब्बत की कैसे भेज दूंगा वापस। सईद शोदा खड़े हुए, बेटे ने अलविदा किया, सईद शोदा ने अल्लाह के सामने हाथ उठाया, कहा खुदा है तू शाहिद रहना मैं किसको भेज रहा हूं। सईद शोदा के गम को झांक के देखो क्या हो रहा है। कहा खुदा है तू शाहिद रहना मैं किसको भेज रहा हूं। अली अकबर आगे गए, अली अकबर जाने लगे, मशहूर मशहूर। कहा अली अकबर बेटा तू जा तो रहा है लेकिन दुश्मन तक पहुंचने से पहले मुझे मोड़ मोड़ के देखते रहना। अली अकबर ने कहा ठीक है बाबा। उसके बाद अली अकबर चलने लगे, एक और मशहूर रिवायत, अली अकबर चलने लगे तो पीछे देखा तो बूढ़ा बाप चला आ रहा है। बाबा आपने तो अलविदा कर दिया था। कहा बेटा तू नहीं जानता जवान को भेजना कितना सख्त है। अजी तो अली का बेटा बहुत लड़ा है, अली का बेटा बहुत लड़ा है, शेरों की तरह लड़ा है, दुश्मन के कुश्तों के पुश्ते लगाए इन्होंने। मौला अमीरुल मोमिनीन का खून था, ये बुजदली के साथ नहीं गिरता है, ये शमशीरें चलाता है, बहुत लड़ाई की है। इन लाइनों ने हर तरफ से हमला किया, अली अकबर के ऊपर हमलों की बारिश कर दी, फिर पत्थर मारना शुरू कर दिए। एक मौके पर अली अकबर जमीन पर गिरे। मुझे नहीं मालूम बाबा को मदद के लिए बुलाया या खुदा हाफिजी का सलाम दिया, क्यों इसमें क्या फ़र्क है। अरे वो जवान है, उसको पता है मैं मदद के लिए बुलाऊंगा, मेरा बूढ़ा बाप आएगा कैसे बेचारा। तो गोया रिवायतों में लिखा है सलामुल्लाह अलैक, ए बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम हो, नहीं कहा अदरिकनी अदरिकनी मेरी मदद को आओ। हम समझ रहे हैं सिर्फ बाप का दिल लरज रहा है और बेटे का भी दिल लरज रहा है। कोई बेटे के दिल से तो पूछे क्या हुआ है वहां। अजी तो दो रिवायतें हमारे पास, एक रिवायत में लिखा है कि सैयद शहादा तेजी से अली अकबर की तरफ बढ़े। अब यहाँ पे दो रिवायतें हमारे पास हैं अजीजों, अल्लाह जानता है रिवायतों में कहाँ तक सनद है, लेकिन मशहूर रिवायतें हैं। एक रिवायत में ये कहा अली अकबर की तरफ दिखाई नहीं दे रहे थे, दुश्मन इतना ज़्यादा शोर गुल कर रहा था और इतना ज़्यादा खाक उड़ रही थी, दिखाई नहीं दे रहे थे, तो अली अकबर के लिए सैयद शहादा ने एक जुमला कहा। अब देखो ब्रदर ये जुमला मैं बताता हूँ, फिर इसकी एक तफसीर भी अर्ज करता हूँ। सैयद शहादा ने कहा बेटा अली अकबर बाप को आवाज़ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा देखिए अभी मैंने कहा गर्दो गुबार उड़ रही थी, नहीं अजीज़ो शायद मामला गर्दो गुबार का नहीं था, अब्बास के जाने पे कमर टूटी थी, अकबर के जाने पर भी नहाई गई है। बेटा दिखाई नहीं दे। अजो एक इतनी अजीब रिवायत हमारे पास है, उलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह जानता है खुदा अजीब है वाकई ये रिवायत। एक मौका आया जब सैयद, इस रिवायत में ऐसे पढ़ते हैं, कहते हैं एक मौका आया जब सैयद शहादा अली अकबर की तरफ बढ़ते हुए जमीन पर टटोल रहे थे, मेरा बेटा कहाँ है। इम्तिहान इमामत है अजीज़ो, इम्तिहान इमामत है। इम्तिहान इमामत का तस्करा हुआ तो वो मैंने क्यों नहीं पढ़ा जब अली अकबर वापस आए थे। एक मिनट मैं ये भी पढ़ देता हूँ, ये भी पढ़ देता हूँ इंशाअल्लाह। खुदा बीबी सैयदा के, बीबी सैयदा आपको अजर सवाब दिलवाएंगी ऐसा अल्लाह से। एक मौका आया जब अली अकबर वापस आए और बाबा के पास आए, इम्तिहान इमामत से याद आया मुझे, वापस आए और अपने बाबा से कहा बाबा अगर एक घूंट पानी का मिल जाता हौज़े कौसर का मालिक है और बेटा एक घूंट पानी मांग रहा है,
کچھ نہیں کہا سید الشہداء نے، کہا بیٹا علی اکبر تم

जाओ तुम्हारे नाना तुम्हें पानी पिलाएंगे, बीबी खदीजा सैयद ताहरा तुम्हें पानी पिलाएंगी। और अजीज़ो एक और रिवायत मौजूद है कि अली अकबर से कहा, बेटा मेरे पास पानी पिलाने को कुछ नहीं है, तू अपनी ज़बान मेरी ज़बान में डाल कर देख। अली अकबर रवाना हुए, ज़मीन पर गिरे, बाबा को आवाज़ें दी, सैयद शहदा अली अकबर के सराहाने पहुँच गए। अजीज़ो अब क्या है, अब क्या है। अल्लाह आप सब के बच्चों को महफूज रखे, इंशाअल्लाह खुदा आप सब के बावानों को आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना नसीब करे इंशाअल्लाह। अजीज़ो मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ, मैं आप सबका खादिम हूँ, मैंने जवान के बेटे की लाश पर खड़ा होना सुना है और मैंने अपने बेटे की लाश पे खड़े होकर देखा भी है, सही है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ बेटे की लाश पे खड़ा होना क्या। सैयद शुहदा अली अकबर के लाशें पर खड़े थे, अली अकबर का बदन कैसा था, शेख अब्बास कुम्मी रिवायत करते हैं, जब अली अकबर जमीन पर गिरे थे तो दुश्मन की तलवारें ऊपर जाती थी नीचे आती थी, शेख अब्बास ने लिखा है फकतलू हो इरबन इरबा, अली अकबर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सैयद शुहदा अब बच्चे के टुकड़े टुकड़े लाशे को देखे या उस बर्ची को देखे जो सीने में लगी हुई है, ऐसा मामला खत्म हुआ। सैयद शुहदा बच्चे की कुर्बानी दे चुके, बड़ी जहमत दी, मैं माजरत चाहता हूँ मातमदारों से, उनकी मातमदारी का वक्त लिया, लेकिन आजीजो आप इतना रोए हो ना, इतना रोए हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा आपको जजाए खैर दे। एक तरफ से बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है मुझे, एक जुमला सिर्फ, एक जुमला बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है, और वो एक शेर है, वो एक शेर है, सही है। सैयद शहदा अली अकबर की लाशें पर खड़े थे, एक रिवायत के मुताबिक बीबी ज़ैनब दरवाजे के खेमे के दरवाजे पर आई और कहा, भैया मैं आऊँ लाशा उठाने। अब उलमा ने इस पर गुफ्तगू की है कि सैयद शहदा बीबी ज़ैनब को कह कर आए थे कि आप कभी बाहर मत आइएगा, तो बीबी ज़ैनब ने क्यों कहा कि मैं आऊँ, वो कह रही थी कि अली अकबर का लाशा देखकर बाबा के दिल पर जो गुजर रही है, अरे मैं तो हुसैन का दिल जानती हूँ, तो कहा मैं आऊँ ताकि हुसैन मेरी तरफ देखे, लाशे से तो नज़र उठाए। अल्लामा ने यहाँ पे एक शेर पढ़ा है अजीज़ो, मैं शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, आप में से जिसके जहन में याद रह जाए ना और कभी तन्हाई में बैठा हो अंधेरे में तो ये शेर पढ़ के रो लेना, ये मसाहिब का शेर है, ये बड़ा अजीब शेर है। शेर क्या है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप के बराबर का लाशा हो जाता है उसका, जवान बेटा बाप के बराबर का हो जाता है, तो लाशा बाप के बराबर का था। तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा। लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ गोदी में उठा लूंगी। मैं पालने वाली हूँ गोदी में उठा लूंगी, मातम है हुसैन।

0: बाबा, अम्मी अभी तक नहीं आई।
1: क्या कहा?
0: अम्मी अभी तक नहीं आई। मुझे और हातिफ को उनके साथ जाना था, लेकिन नहीं आई।
1: कहाँ से वापस नहीं आई?
0: घर पे नहीं है।
2: जुदाई सच में एक जख्म है बेटी, लेकिन जख्म चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, वो एक न एक दिन भर ही जाता है।
0: इस जुदाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
2: तुम ही कह रही थी कि उसके हाथ में खत नहीं था, तो फिर ये बेखबरी और बेकरारी किस लिए? पूछा नहीं किसी से?
3: क्यों नहीं, हर दिन पूछा मैंने, लेकिन किसी ने कभी भी एक लफ्ज नहीं बताया। बस शुरू में एक बात कही कि वो खिलाफत के खिलाफ साजिश कर रहा था।
0: दर्द फिराक की ताकत नहीं है मुझ में।
2: जब कभी भी तुम्हें जुदाई का एहसास हो तो मेरी सरजनिश करना, मुझ जैसे लोगों को माफ करना कि हमारी खामोशी की वजह से ही तुम्हारा ये हाल हुआ है।
0: आपका क्या कसूर?
2: सब हमारी ही गलती है, वरना उनमें से कोई भी, यहाँ तक के खलीफा भी, हमसे टकराने की जुर्रत ना करते।
3: खुदा तब तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को तब्दील ना करे। हालात खुद बदलने पड़ते हैं। खुदाया मुझे जिंदा रखना ताकि मैं अपनी आँखों से उनकी खिलाफत की तबाही देख सकूं। फरजंदे अली की दावत के लिए काबिलियत की ज़रूरत थी जो हम में नहीं थी।
2: देखो, वो चाहे अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, नूरे खुदा बुझने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इमाम आएंगे और अदालत कायम होगी।
0: इंशाल्लाह।
3: आप लोग तो खलीफा की मुखालफत की बात ऐसे कर रहे हैं मानो उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो मुसलमान ही ना हो।
2: शाबाश बेटी, तुम मेरी बात समझ गई हो। जो कोई भी जुल्म के खिलाफ खामोश हो वो मुसलमान तो क्या इंसान भी नहीं हो सकता।
3: तख्त खिलाफत पर बैठा हुआ शख्स जो भी हो, वो चाहे चोर और उच्चका ही क्यों ना हो, उसकी इताअत वाजिब और उसकी मुखालफत हराम है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप ही बताइए, मैं कुछ गलत कह रही हूँ?
0: इन मासूम बच्चों को जरा देखो तुम, आखिर उन्होंने क्या जुर्म किया था जो ऐसी सजा मिली है? क्या कसूर है?
3: इंशाल्लाह वो जल्दी वापस आ जाएंगे, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी खलीफा के खिलाफ कयाम करने निकले थे, हराम काम करते हैं और फिर उसके अंजाम से भी परेशान होते हैं।
4: कौन सा हराम बहू, और किस काम के अंजाम को परेशान बोल रही हो? सिप्ते पैगंबर की दावत?
3: हुसैन रसूल अल्लाह के अजीज हैं और हम पर उनका एहतराम वाजिब है, लेकिन आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया था।
4: क्या किया?
3: बाबा ने बताया कि सारे उलमा ने उनके कयाम को फितना बताया है, और इतना ही नहीं उनकी हिमायत करने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने हमारे दरमियान इख्तलाफ डाल दिया।
0: उसे इख्तलाफ नहीं कहते, हक को बातिल में जुदाई डालना कहते हैं।
3: हुसैन जो कर रहे हैं वो हक है? आपके अलावा सारे उलमा और अंसार गलत हैं? बोलिए। बैत का इनकार दीन से खारिज होने के बराबर है।
4: दीन? कौन सा दीन? दीन तो अली थे और अब उनके फर्जंद हुसैन हैं।
3: ये कोई मीरास नहीं जो बाप से बेटे को मिलेगी।
2: शाबाश बेटी, सही कहा। यही यजीद जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसे भी तो उसके बाप ने बिठाया है ना।
4: खाक हो उस शख्स पर जो हुसैन और यजीद का मुआजना करे।
2: अली मिंबर पर जाते थे और कहते थे कि ए लोगों, जिसे भी मेरी हुकूमत पर एतराज है वो आगे आए बयान करे। वही अली जिनकी अदालत पर सारी दुनिया हैरान थी। हुकूमत पर तनकीद हुसैन की बाबा के जमाने में हलाल थी, लेकिन आले यजीद के यहाँ हराम है।
4: जुल्म के खिलाफ खामोश रहना ए मेरी बेटी मुजाहिद को भी दुश्मन बना देता है।
3: जुल्म, जुल्म, कौन सा जुल्म? बा खुदा मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
5: समझ रही हूँ, तुम सिर्फ अमन और बद अमनी को देखती हो। एक मर्तबा अपने माजी पर नजरें डाल लो, तुम हक नाहक का फर्क समझती हो। रुक जाओ नायला।
3: मेरे बाबा ने जो तुम्हारे

0: हमारे साथ किया उसका बदला मुझसे ले रहे हो?
1: मैं बदला ले रहा हूँ।
0: और क्या कर रहे हो तुम?
1: बहस तुमने ही शुरू की थी।
0: गलत मैंने किया?
1: तुम ही ने बात को बढ़ाया और खामोश नहीं हुई।
0: तुमने क्या किया?
1: क्या किया?
0: बस बैठे बैठे मुझे देख रहे थे।
1: तुम्हें उनसे क्या मतलब?
0: मजा आया होगा मेरी बेइज्जती देखकर।
1: उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, उसमें तुम कहां से आ गई?
0: मैं तुम्हारी बीवी हूँ या नहीं? अगर हूँ तो मेरा साथ दो, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ।
1: नायला, नायला, रुक जाओ। तुम्हें उसी दिन से मेरे और घर वालों के अकीदे का पता है जब तुमने दिल की बात की थी। वैसे ही मैं अपने घर वालों की वजह से परेशान हूँ। मेरी परेशानियां और मत बढ़ाओ।
0: मैं अपनी बात कह चुकी हूँ। तुमने मेरे बाबा की शर्त को कबूल किया था। अलवी अपने रास्ते पे हैं और तुम अपने रास्ते पे। बात खत्म।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह।
2: मुझे बहुत बुरा लगता अगर तुम देर से आते। बहुत अच्छा किया तुमने जो आ गए। तुम्हें पता चल जाए ना कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है तो तुम्हारे होशो हवास उड़ जाएंगे। सच में
1: सब खैरियत तो है?
3: सब खैरियत है, हमारी सोच से भी बेहतर। मक्के के एक कारवां को मैंने दो लोगों की जगह रखने को कहा है। शायद इस हज और ज़ियारत की वजह से तुम्हारा यह रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो।
0: शुक्रिया बाबा, आपने जो मेरी आरजू पूरी कर दी, खुदा का शुक्र है। इतनी परेशानियों के बाद इस सफर से ज्यादा अच्छा और भला क्या हो सकता है।
3: तुम खुश नहीं हो?
1: असल में मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, सुन के हैरान हो गया हूँ।
3: हज और ज़ियारत का मौसम है ऐ बंदे खुदा, मेरे कहे बगैर ही तुम्हें उस बारे में सोचना चाहिए था।
4: कहाँ है?
0: कौन?
4: अगर उसे इतनी अक्ल नहीं है तो आपको समझना चाहिए शौहर और बच्चों के बगैर रुकना ठीक नहीं।
0: बिस्मिल्लाह।
4: तलमा!
5: किसे ढूंढ रहे हो नईम? तुमसे किसने कहा कि तलमा यहाँ आई है?
0: नहीं,
3: वो तो जाने वाली थी, हो सकता है शाम की तरफ चली गई हो।
4: उसके बच्चे और सारा सामान तो घर पर है, फिर शाम क्यों जाएगी?
5: आखिरी बार मैंने उसे शादी में देखा था, घर नहीं लौटी क्या अभी तक?
4: कल रात मेरी हालत ठीक नहीं थी, अपने होश में नहीं था। घर पहुंचा तो सुबह तक सहन में ही सोता रहा।
3: कूफे के जर्रे जर्रे को छानो और उसे ढूंढो, और जब तक वो ना मिले वापस नहीं आना। तिजारत खाने की फिक्र ना करना, मैं और हिलाल देख लेंगे।
5: जरूर वापस आ जाएगी, खुदा पर भरोसा रखो।
3: खादिम,
4: आतिफ, अपने भाई का ख्याल रखना।

0: मुझे तुमसे कोई काम नहीं। बहुत अच्छा किया। जिस शहर में तुम्हारा शौहर बदनाम हो वहां रुकना मुनासिब नहीं। ये लो लो, आज के बाद जहां भी जाओगी
1: आगे बढ़े
0: हमारे खानदान का जिक्र जरूर करना कि हम खान के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं।
1: हरकत करें।

0: से सिर के हाथ का मेरी तो हंसी छूट गई। चलो चलो
1: सलाम नाइम भाई, कपड़ों के बारे में कुछ बात करनी थी।
0: नहीं अभी नहीं, बात इससे हमें काफी फायदा होगा।

0: सारे शहर में फैल जाओ, कूफे की गली कूचों की खाक छान मारो, जिसके बारे में भी शक हो उसका नाम मुझे बताओ, इसे रखो। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो, निकल जाओ। खामोशी के साथ काम करना। शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि नईम की बीवी उसे छोड़कर गई है, समझ गए?
1: हम उन्हें ढूंढ लेंगे।
0: इसे ले जाओ, आपस में तकसीम कर लो, और जो भी पहले खबर लेकर आएगा उसे 2 बोरियां और दूंगा।
1: हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आप मुतमईन रहें। खुदा
2: जी।

0: Niklo yahan se. Niklo.
1: Ji huzur.
0: Ye kahan aur jeen se aane wala baal kahan? Isse kufe mein bhejne mein itna waqt lagta hai ki iske liye paisa aur waqt kharch karne ka koi fayda nahi. देखा इन सुस्त और काम चोरों को, यही चीज तबाह कर देती है. माजिद, ध्यान से लोगों को सर पे नहीं चढ़ाना, उन्हें उनका हक लौटाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसान जताते हुए लौटाओ ताकि उनका सर हमेशा झुका रहे. ये लो, सफर का खर्चा है.
1: मेरे पास जरूरत के लिए काफी है, अगर इसे लूंगा तो बोझ बन जाएगा मेरे लिए. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: जो लड़की इस वक्त तुम्हारे साथ है वो अहद की लड़की है बेटा. बहुत खर्चे हैं उसके, बहुत नाजो नखरे में पली है. उसका सब कुछ बदल गया है, जिंदगी, ओढ़ना, बिछौना, अकीदा और इबादत. सदका नहीं है, अपनी मोहब्बत की कमाई समझ कर रख लो. अच्छी जिंदगी जियो. मैं नायला की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ.

0: अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो?
1: मैं तो तैयार हूँ, सब कुछ किया पर वो नहीं आ रहा, मेरी बात ही नहीं सुनता।
0: किसी काम के नहीं हो तुम। अलमान, क्या है, कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जहन्नुम तो नहीं जा रहे हो ना? उठो चलो, देर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
2: मैं नहीं जाऊंगा।
1: अगर चलोगे तो दादाजी की तलवार चुपके से उठाएंगे और दोनों मिलकर खेलेंगे।
2: अंधे हो, देखा नहीं वो हिलाल को तोहफे में दे दी है?
1: शायद हिलाल भी आ जाए।
0: रुकना है, रुक जाओ, सड़ो जहन्नुम में। कुछ देर बाद जब अंधेरा होगा और भेड़ियों की आवाजें आने लगेंगी और भूख के मारे तुम्हारी जान निकलेगी, तो फिर तुम्हें दादा के घर की कीमत पता चलेगी। उठो चलो हमारे साथ।
2: कसम से मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, बस यहाँ रुककर अम्मी का इंतजार करूंगा।
0: सलमा आते ही पहले तुम्हें ढूंढेगी, फिर चाहे तुम यहाँ रुको या अपनी फूफी के घर रुकना चाहो। चलो
2: छोड़िए मुझे। मैं नहीं जाऊंगा।
0: तो क्या करूं? मेहंदी पसंद है तुम्हें? मेहंदी पसंद है ना इसे? वादा करता हूँ तुम्हारे लिए मेहंदी ले आऊंगा तुम्हारे
2: नहीं
0: हाथों।
2: चाहिए मुझे मेहंदी भी नहीं चाहिए।
0: क्यों?
2: डर लगता है।
0: किससे डर लगता है?
2: दादा से डर लगता है।
0: दादा ने शादी में तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे सर पर सिक्कों से सदका उतारा था और नाचे थे। क्या तुम्हें पता नहीं कितना चाहते हैं वो तुम्हें? शादी में गए थे ना तुम?
2: मुझे नहीं जाना था शादी में, अम्मी ने जबरदस्ती भेजा, कहा बहुत काम है, इसीलिए राजी हुआ मैं।
0: क्या फूफी से नहीं मिलना चाहते?
2: मिलना है, लेकिन दादा।
0: दादा क्या?
2: हमेशा मुझ पे चिल्लाते रहते हैं आपकी तरह। माँ इसीलिए चली गई है, आपकी और दादा की वजह से। यकीन नहीं हो रहा है ना हतीफ, तुम बताओ।
0: चिल्ला रहे थे कब?
3: इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? तुम तो सामान लेकर चले गए थे ना, तो अलवियों के मोहल्ले में क्या कर रहे हो?
4: हज पे जा रहा हूँ।
3: खुदा की पनाह में।
4: जाने से पहले आपसे मिलने आ रहा था।
3: जिस दिन अली पर लानत की थी उसी दिन सोच लेना चाहिए था। खुदा के बंदों ने ये हाल कर दिया है तुम्हारा, सोचो खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा।
4: मैंने कभी लानत नहीं की।
3: सारे शहर ने तुम्हारी आवाज सुनी थी, तुमने नहीं सुनी?
4: मैंने कभी जबान से लानत नहीं की, जो भी कहा वो तकिया था।
3: या तो मार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या तुम्हें तकिया का मतलब ही नहीं पता।
4: ये मामला मेरे और ईमान के दरमियान है। बदनाम जरूर हुआ हूं मैं, लेकिन मैंने नायला की जान बचाई है। अगर आपके मसलक में इसे गुनाह कहते हैं, हाँ तो मैं गुनाहगार हूं। हमारा मसलक अलग नहीं है।
3: जिस चीज ने तुम्हें अंधा कर दिया है उसे इश्क कहते हैं। इमाम को अपनी हवस का बहाना बनाया तुमने, ताकि आहद की बेटी को भी हासिल कर लो और सीना चौड़ा करके ये भी कह सको कि तकिया करके तुम अम्मार बन गए।
4: मेरा हिसाब किताब खुदा पर छोड़ दे। जिस जहन्नुम में आपने मुझे फेंक दिया है वहां खुदा भी है, जिसकी रहमत और करम आप जैसी नहीं है।

0: आखिर आज तक मेरी वजह से आपको क्या परेशानी हुई है? ये नाराजगी और गुस्सा छोड़ दीजिए अब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: मुझे क्या परेशानी है? पूरे शहर की लानत और मलामत झेल रही हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से शहर में किसी ने भी मेरे खत पर दस्तखत नहीं किया। खुदा और बंदों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे।
0: कौन सा खत?
1: मैंने फिर खत लिखा है।

0: कैसे माफी मिलेगी मुझे? जब तक माफ नहीं करोगी मैं यहां से जाऊंगा नहीं।
1: उस खत को उसकी मंजिल तक पहुंचा दो, शायद शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं।

0: नईम हर जगह अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिली। वालिया का भी कुछ पता नहीं है। हजार बार मैंने उसके बारे में सोचा। जुनैद का कारनामा भी कोई जाती इंतकाम नहीं था, उसके पीछे भी तलमा का हाथ था। उसी ने जुनैद को भड़काया है
1: शायद, लेकिन मैंने शादी में औहद को देखा कि उसने अपने गुलाम को कोई इशारा किया और फिर गुलाम ने वालिया के कान में कुछ कहा। वालिया जल्दी जल्दी वहां से बाहर निकल गई। मैंने उसका पीछा किया तो वो तिजारत खाने की तरफ जा रही थी। मैं काफी देर वहां खड़ी रही पर वो बाहर नहीं आई। वापसी में मैंने गुलाम और तलमा को उसी तरफ जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। मैंने उनका पीछा किया और छुप कर देखा तो वालिया हैरान और परेशान चीख चीख कर कह रही थी कि मैं कातिल नहीं हूं। मैंने अपने कानों से उसे कहते हुए सुना था कि ससुर और बहू की लड़ाई में मेरा क्या लेना देना। मुझे लगता है आहत ने तलमा का कत्ल करवा दिया है। मेरे अजीज भाई, हमें उस खानदान से सिवाय परेशानियों के और कुछ नहीं मिला। अब तुमने वहां शादी कर ली है, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन उनसे रफ्तो आमद और खाना पीना अलग कर लो। उनसे जितना दूर रहोगे अच्छा रहेगा।

0: आप शादी में धर्मा को बुलाने पे क्यों इसरार कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता है?
1: जब तुम्हें होश आ जाए और इंसान बन जाओ, फिर आ जाना मुझसे बात करने के लिए।
0: मैं होश हुआ हूँ, अभी बताइए मुझे आपके दरमियान क्या चल रहा था जो मुझे पता नहीं था। मैंने पूछा क्या बात है?

0: अच्छी तरह मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। अपनी बीवी को तलाश कर रहे हो, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उसकी आकृति ठिकाने लगानी चाहिए थी, जो तुमने नहीं किया इसलिए मैंने ठिकाने लगा दिया।
1: क्या
0: तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, जो मैंने नहीं होने दिया।
1: बर्बादी। तो कहाँ ठिकाने लगाया बताइए मुझे, मेरी बीवी कहाँ है?
0: मार दिया उसे।
1: मार दिया।
0: डरो मत, मैंने अपने हाथों पर उसका गंदा खून नहीं लगने दिया। उसी से यह काम करवाया जिसके शौहर को तुमने नायरा को मार डालने के लिए भेजा था। अपने शौहर से बेहतर निकली हो तुम, बेफिक्र रहो। औहद के बेटे के लिए तलमा से भी अच्छी लड़कियां हैं।

0: क्या बात है, बुद्ध की तरह क्यों खड़े हो? अच्छे से तलवारबाजी करो।
1: अभी बताता हूँ तुम्हें कि तलवार कैसे चलाते हैं। डरपोक कहीं का ये ले।
2: क्या कर रहे हो अलवान? दिमाग खराब हो गया क्या? भाई को मारोगे?
0: देखिए

0: गया बाबा, क्या हो गया इसे? ना मुझे तलवार चाहिए और ना ही भाई।
1: कहा था तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकालना। उठाओ, इधर आओ, इधर। तोहफा पसंद नहीं आया? अच्छा नहीं लगा क्या? शायद ये थोड़ी वजनी है, दूसरी ला दूं क्या?
2: अम्मी कहाँ है?
0: बाबा ये आपका है क्या?

0: तेरे छोटे से खानदान को सलाम। नईम, आतिफ और मेरे बेटे अलवान। प्यारे बच्चों, मैं जाते वक्त तुम लोगों को खुदा हाफिज नहीं कर पाई। एक लंबे सफर पर जा रही हूँ और तुम्हें खुदा के हवाले कर रही हूँ। अपना और अपने बाबा का ख्याल रखना। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना, खुदा का शुक्र है।
1: खुदा का शुक्र है।
2: अपनी माँ के बारे में पूछ रहे थे ना,
0: तुमसे बात कर रहा हूँ।
3: मुझे यकीन है अम्मी मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती, वादा किया था उन्होंने।
0: अब चली गई है तो क्या करूं? खत तो देख लिया ना तुमने। तुम अलवान को पढ़ के सुनाओ।
1: बाबा सच कह रहे हैं।
0: पढ़ के सुनाओ।
3: सच कह रहे हैं पापा।
2: कहाँ जा रहे हो?
3: मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने। दिया? दादा से पूछने जा रहा हूँ।

0: क्या बात है, जाग गई है? बस बस, मिल गया सुकून?
1: अकेले ना जाए, मुझे याद आएगी।
0: इतना मत रो बेटी, इधर मेरे पास आ जाओ। आ जाओ बेटी, आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। यहाँ, रोते नहीं है।
2: कोई फायदा नहीं जाने का।
0: चुप हो जाओ।
2: रुक जाओ।
3: मैं इस तरह से हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती
0: मेरी जान।
3: मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती
0: मेरी जान। रो नहीं।
3: अब शायद जिंदान की दीवारों से टेक लगाकर बैठना ही मेरे इंतजार की शिद्दत को कम कर सकता है।
0: सो जाए तो चली जाना।
3: सोने का वक्त गुजर गया है, अब नहीं सोएगी।
0: इतने दिन से हिलाल मामू से मिलने की जिद कर रही थी तुम। मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी जाके उसके कांधे पे सवार हो जाती। चलो चुप हो जाओ, जाओ।
1: सवार होके क्या करूं? मुझे पापा की याद आ रही है। शायद मेरे इंतजार के दर्द को भी जिंदान की दीवारी कम कर सकती है।
0: सुन लो,
1: मुझे पापा की याद आ रही है।
0: ठीक है, ठीक है, रो मत मेरी बच्ची, रो मत।
2: बासित की जुदाई हम सभी के लिए काफी है, तुम मजीद हमारे दर्द को ना बढ़ाओ।
3: तुम्हें क्या हो गया है हिलाल मेरे भाई? कोई खबर मिली है?
2: कैसी खबर? देख रही हो कितना रो रही है बच्ची। अगर बाहर ले जाने से चुप होती है तो बाहर ले जाओ।
0: अगर मुश्किल नहीं तो इसे भी साथ ले जाओ, अली को मैं देख लूंगी। जाओ मेरी बच्ची, जाओ अली को बोसा दो, बोसा दो अली को। शाबाश, जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ, जाओ।

0: आह्या, दोबारा ना मिल सके तो माफ कर देना।
1: काफिला निकलने तक मेरा इंतजार करना।

0: तुम्हारे जाने से पहले जरूर आ जाऊंगी इंशाल्लाह, जरूर आऊंगी।
1: बस बस छुपा जाओ छुपा जाओ।

0: सर की पट्टी नहीं मिल रही है।
1: सामान भी बांध लिया, माँ से माफी मांगे बिना ही मक्के जा रहे हो तुम।
0: आपकी शर्त बड़ी सख्त थी, लेकिन फिर भी उसे मानकर मैं आपसे माफी मांगने आया।
1: खुदा का लाख लाख शुक्र है।
0: लेकिन उस दिन मेरे जहन में जो सवाल पैदा हुआ था, जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा मैं वो खत हरगिज नहीं लूंगा।
1: पूछो, जो भी सवाल है पूछो।
0: आपने हबीब के खत पर दस्तखत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और आपने देखा भी है कि अगर खत पकड़ा गया तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो फिर आप अपने बेटे की जान पे जुआ क्यों खेल रही हैं?
1: ये कैसी बातें कर रहे हो हिलाल? कैसा जुआ? तुम मेरे पास अल्लाह की अमानत हो। तुम जब पैदा हुए थे तो अली से भी ज्यादा कमजोर थे। मैंने अपनी जान लगा के तुम्हें पाला है, बड़ी सख्तियों में पाला है बेटा तुम्हें। तुम्हारी तलवार के हर वार और हर तीर के लिए नजर उतारी है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें आखिरत की सआदत का रास्ता दिखाऊं। मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हारा हाथ औलाद अली के दामन से अलग ना हो।
0: आप अपने बेटे को नहीं जानती। अगर खत का मामला ना भी होता तब भी मैं इमाम से मुलाकात के लिए मक्का जाता।
1: जानती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, अच्छी तरह जानती हूँ।

0: ये सफर का खर्च है। मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक के लिए बस जब इमाम के पुरनूर चेहरे पर तुम्हारी निगाह पड़े तो मेरी तरफ से भी जी भर कर उनकी ज़ियारत कर लेना।
1: ये भी बहुत खूबसूरत है।
2: मुझे भी बहुत पसंद है।
3: मेरी सलीकेमंद बेटी तुम्हारे किस काम आएगी?
2: मैं सोच रही हूँ पर्दा बना लूँ।
1: कहाँ के लिए?
2: बेटी के कमरे के लिए।
1: शायद बेटा हो तो फिर।
4: आहार
2: अलवान है।
4: आहार
1: बिस्मिल्लाह। ये क्या तरीका है?
4: आहत कहाँ है?
2: अलवान क्या हुआ बेटा?
4: आपने क्या किया है उनके साथ? कहाँ भेजा है मेरी माँ को? मैंने खुद सुना था अपने कानों से। आपने कहा था कूफा से चली जाओ। बच्चा नहीं जो किसी खत पर यकीन कर लूँगा। बताइए मुझे, जवाब दीजिए, कहाँ गई है मेरी माँ?
1: ये क्या कह रहा है आहत?
5: खत? कौन सा खत?
4: मेरी माँ का खत।
5: तो उसने खत लिखा था? मैंने कहा था उस जलील औरत की फिक्र करना छोड़ दो।
2: बाबा,
4: मेरी माँ का नाम इज्जत से ले।
1: अलवान,
5: यहाँ मेरे पास आओ। आओ, पहले आंसू साफ करो।
4: खुदा के लिए माँ से कहिए वापस आ जाए।
5: ठीक है।

तो नहीं, ये लफ्ज़ मेरा नहीं, कितना सोना हो तो ज़कात वाजिब होती, एक फ़िक़ही मसला है, क्वायरी सोना। अब वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ज्वेलरी पे ज़कात नहीं है और गोल्ड के बिस्किट पे ज़कात नहीं है, लेकिन बाहर जो है ज़कात जिस सोने पर कितना हो। तो शहज़ादी ने उस वक्त यही मैसेज देना था, यही उसे सवाल किया कि ये जो तू पूछ रही कि कितना गोल्ड हो तो ज़कात वाजिब है, ये अपने लिए पूछ रही है कि मेरे लिए। चकरा के उसने कहा, हैरान होकर कहा, अबिट सरप्राइज शहज़ादी, शरीयत तो एक है, वो आपके लिए और हमारे लिए एक है। कहा कि नहीं, फ़र्क है, अगर अपने लिए पूछ रही है तो 20 दीनार हो तब ज़कात वाजिब होती, और हमारे लिए यह है कि घर में इतना सोना रहा कैसे कि ज़कात देने का वक्त आ जाए। हम तो जो सुबह आता है शाम तक राह खुदा में दे चुके होते, हमसे नहीं कही, ये हमसे डिमांड नहीं की जा रही। खुद ही इस वाक़े के अंदर शहज़ादी ने बताया, और मौला का एक बहुत ही मशहूर लेटर नैजल बलागा का जो मिडिल पार्ट है जिसमें मौला के लेटर्स हैं तकरीबन 74-75। अब वो सारे लेटर्स तो कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन उसमें 47 नंबर बहुत ही फेमस। अच्छा, अब ये बात आ गई है तो एक जुमला में कह दूं, क्योंकि ये भी मेरी आज की स्पीच के अंदर आगे चल के आने वाला। मौला ने जब बदतरीन दुश्मन अहले बैत मुआविया से और मुआविया के जो डेलीगेशन है उससे मुनाजरे के लिए, डिबेट के लिए, या जो कहिए कि जो भी उस वक्त बातचीत चल रही थी, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा, कहा तुम मेरी जानिब से जाओगे। एक जुमला कहा नहजुल बलागा में, आज भी जाके चेक कर लीजिए, रेफरेंस को बहुत ही आसान कर देता हूँ, पार्ट 2 अली के लेटर्स, उसके बिल्कुल लास्ट पेज पे जाइए, और उसके अंदर ये जुमला है, मौला कहते वला तखासिबहुम बिल कुरान। देखो, उनसे कुरान के जरिए से आर्गुमेंट न करना, हदीस के जरिए से आर्गुमेंट करना। देखिए, आज हमारा वो माहौल बन रहा है कि जो वहाबियत ने नारा लगाया था कुरान, वहाबियत ने नारा जो लगाया वो नया नहीं है, बिल्कुल शुरू में जब शहजादी का हक छीना गया वहां भी ये कहा गया कुरान, नहीं उससे भी पहले जब पैगंबर इस्लाम को कागज और कलम देने से इंकार किया गया तो यही कहकर के कुरान हज़्बुना किताबुल्लाह। आज आपको अपनी कौम में कितने ऐसे ऑरेटर और स्पीकर नज़र आएंगे जो कहेंगे कि हम तो सिर्फ कुरान से बात करते, और पब्लिक बहुत खुश होकर सुनती है कि देखो ये कुरान से बात कर रहा। मौला मना कर रहे हैं कि देखो कुरान से, जाके देख लीजिए, देख लीजिए नहजुल बलागा। यहाँ तो मैं बाकायदा आप हजरात से ये डिमांड करूँगा कि चेक कीजिए कि मैंने सही आपको रेफरेंस दिया और नहजुल बलागा में ये है कि नहीं। कहा कि नहीं, कुरान नहीं, हदीस, इसलिए कि कुरान वो है कि उसकी आयतें कुछ इस अंदाज की हैं कि हर आदमी उसको ट्विस्ट करके अपने मतलब की बात निकाल लेता। चुनाचे इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है, जो हमारे यंग स्पीकर आ रहे हैं अब वो जब कुरान की बात कर रहे हैं तो पब्लिक बहुत इम्प्रेस होती है कि देखो ये तो सिर्फ कुरान से बोल रहा है, और वो जो हमारे पुराने 70-75 साल के बूढ़े बुढ़े उर्दू ज़ाकरीन आते हैं वो तो हदीसें पढ़ते हैं। अब एक जुमला कह दिया जाता है कि पता नहीं हदीस सही है कि गलत, तब हदीस सही है कि गलत है, यही तो मर्जे का काम है। ये मर्जेयत का इंस्टीट्यूशन इसलिए इतना ताकतवर बनाया गया। कुरान में आप ये नहीं कहते कि जो इंटरप्रिटेशन कर रहा है पता नहीं सही है कि पता नहीं गलत, वहाँ तो बस उसने कुरान पढ़ा, अपनी मर्जी का ट्रांसलेशन किया, आपने बात मान ली। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, जो अहले बैत का पहला दुश्मन है पैगंबर कागज़ और कलम मांग रहे हैं, मना किया, कहा कि कुरान, और वहाँ से सिलसिला मुआविया तक आया। मुआविया ने नैज़ों पर कुरान बुलंद किए हैं, वो भी कुरान को एक्सप्लाइट कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो मौला ने कहा कि उनसे कुरान के ज़रिए बहस नहीं करना, वरना वही शिमर वाला जुमला हो जाएगा ना, मैंने शायद शुरू मजलिस में भी पढ़ा था और आपने कई बार सुना, ये कहता है मैंने तो करबला में इमाम हुसैन को कत्ल किया क्योंकि कुरान ने मुझे ये ऑर्डर दिया, कत्ल हुसैन भी कुरान से, और ये आज के ज़माने का सबसे बड़ा मसाला, लेकिन इस पर बात आज नहीं करना है, बाद में करना थी। ये तो तमहीद में ज़रा सा इसका तस्करा आ गया कि अब जो हमें अहले बैत ने जो मैसेज दिया, ये बीच में एक हदीस आ गई, वो ये था कि इस्लाम के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए 21st सेंचुरी में इस्लाम क्यों चलेगा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, ज़रूरत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल की तरह कोई आके हजरत

ईसा की पूरी शरीयत को कैंसिल करें। ऑलरेडी इस्लाम ने इतना फ्लेक्सिबल रखा, एक ही जुमला कह रहा हूँ क्योंकि आज की रात गम का बयान ज़्यादा है, एक ही जुमला कह रहा हूँ कि कुरान इस्लाम में जो मुस्तहबात और मकरूहात है ना, उसने दीन को बहुत ही आसान कर दिया। वाजिबात और हराम का सिस्टम बहुत कम है, इसलिए 21st सेंचुरी में अगर आप खाली वाजिबात और हराम को अपने सामने रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जिसका दिल चाह रहा है इबादत का, तो मुस्तहबात और मकरूहात एक पूरा सिस्टम है, इससे ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन अब जो मुझे बात करना है वो ये कि कुरान करीम की जिस आयत की, जो सूरह जुमा की आयत है, आप हर जुमे

तिलावत सुनते हैं। अब ये भी एक आज की दुनिया का तरीक़ेकार है कि आदमी को इतना बिजी कर दो। जब आप जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, सूरह जुमा की तिलावत अक्सर वेस्टर्न कंट्रीज में ख़त्म करना पड़ी, इसलिए कि इतना टाइम नहीं होता है। मुख्तसर टाइम में नमाज ख़त्म करना इस्लाम ने पहले दिन से ही इजाज़त दी कि आप कुल हुवल्लाह का सूरह पढ़ के दोनों रकतों के अंदर नमाज जुमा पढ़ सकते हैं, लेकिन हाईली रिकमेंड सूरह जुमा। तो अब उसकी ये आयत, और जो कल की मैंने एक बात कही थी ना कि ये फुटबॉल मैच वगैरह, तो अब देखिए कि क्या ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो। कुरान कह रहा है जब वो लोग तिजारत को देखते हैं और लहवा और खेल तमाशों को, इन फजू इलैहा, तो दौड़ के वहाँ चले जाते। अच्छा, दौड़ के उधर जाते का मतलब क्या? उनके सामने दो ऑप्शन होते, एक तरफ मस्जिद नबवी में वो रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं नमाज, अभी ऐसा नहीं है कि घर में बैठे हैं और हमको डिसीजन लेना कि मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें या वो जो स्टेडियम है उसमें जाके मैच देखें। लहवा, लहवा, लहवा का लफ्ज़ कुरान में आया है जिसमें सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हलाल भी हैं कुछ हराम भी हैं, लेकिन जो मैसेज है जो एवरी जुमे को हर मोमिन को मिलना चाहिए, आजकल नहीं मिल पा रहा है टाइम की वजह से, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुरान कह रहा है कि अब ये ऐसा नहीं है कि अभी अपने घर में बैठे, अभी घर से निकले नहीं है, अभी सोच रहा है कि आ चुके हैं मस्जिद में, नमाज स्टार्ट हो चुकी है और नमाज पढ़ाने वाला भी अल्लाह का रसूल है, लेकिन इधर वहाँ मैच शुरू हुआ, इन फजू इलैहा, दौड़ के जाते हैं, तरकू का कायमा, और तुझे अकेला छोड़ देते हैं। तू नमाज में खड़ा है, तरकूक, तुझे छोड़ के चले जाते। फिर कुरान ने वो बात कही जो कल की मजलिस के शुरू में मैंने तीन हदीसें आपके सामने पढ़ी थी ना, मौला रेशम क्यों हराम है, इमाम का जवाब, ये प्योर गोल्ड हमको इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है, इमाम का जवाब, और वो जो एक इबादत करने वाले को जन्नत का मोती मिल गया। अब ये कुरान ने, कुरान ने कहा कुल मा इंदल्लाह खैरु मिन अल्लाह हुए व मिन तिजारत, हबीब कह दो इन लोगों से जो तुम्हें अल्लाह के पास से मिलने वाला है वो इस खेल तमाशे से भी बेहतर है और इस तिजारत से। अच्छा, अभी आए थे आप बहुत सुनते, टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं। तो अब कुरान ने ये कहा ना कि एक सिस्टम वो कि जहां पर कभी तिजारत के ज़रिए और कभी खेल तमाशे के ज़रिए से लोगों को रसूल से हटाया जाएगा। कम्प्लीट अगर आप देखेंगे कम्प्लीट, तो ये सिस्टम बनाया मुआविया ने। यजीद करबला के वाक़े का यकीनन सबसे बड़ा कैरेक्टर या विलन हमारे सामने है, जितना यजीद को बुरा कहें कम है, और हम आमाले आशूरा वगैरह के अंदर, लेकिन यजीद के बाप का रोल बहुत अहम है। यजीद आलम इस्लाम पर ज़बरदस्ती बाई फोर्स इम्पोज किया गया उसके बाप की वजह से, अब उसके हालात बयान करने का वक्त नहीं, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूँ कि ये जो उसकी प्लानिंग और पॉलिटिक्स थी, आज की दुनिया भी उसी को फॉलो कर रही, उसके अंदर ये तीन चार बातें बहुत अहम थी। जैसे आज की दुनिया भी, मुझसे पहले जो इंग्लिश स्पीच हो रही थी उइज़ हुसैन, और आप हजरात से एक रिक्वेस्ट की जा रही थी, आज का ज़माना, अच्छा मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती है इसलिए मैं उतना तो नहीं समझ पाया, लेकिन चूँकि इस कंपेन को मैं जानता हूँ वैसे ही हमारे शहरों में भी ये होती है इसलिए इसका बैकग्राउंड मुझे पता है, मैं स्पीच समझा हूँ कि ना समझा हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम कि आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया, और वही हमारे बच्चे और बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसी चीज़ पे यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं जो उनको सोशल मीडिया के थ्रू आती। खैर, अब ये भी बहुत कॉमन बात है, इसको पर बात करना बेकार, सोशल मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल या यूजेज मुआविया ने किया था। मुआविया ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था और एक पूरे आलम इस्लाम में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि साहिबान ईमान के लिए जो रसूलुल्लाह का ज़माना देखे हैं, क्योंकि मुआविया का ज़माना और रसूलुल्लाह का ज़माना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं देखे हुए, उनके लिए अपनी फैमिली और अपने बच्चों के ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा था, और उसका ख़ास टारगेट था मोमिनीन के बच्चे, ख़ास उसका टारगेट था। जैसा मैंने खुद किसी एक वेस्टर्न कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर का जो औरत थी ये बयान सुना था कि जब लोगों ने कहा कि ये इतने लोगों को आप बुला रहे हैं, इमिग्रेशन दे रहे हैं, तो ये तो वही अपना कल्चर अपना सिस्टम लेके आ रहे हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम, उन्होंने कहा

फोकस ये है ही नहीं, इनको करने दो जो कर रहे हैं। कितने साल करेंगे, 20 साल 30 साल 40 साल? हमारा मेन टारगेट इनके, यानी ओपनली कहा, ऐसा भी नहीं टारगेट का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारा मेन टारगेट इनके बच्चे, उनको हम इस तरह बनाएंगे कि जब वो बड़े होंगे तो बिल्कुल हमारे सिस्टम में उसी तरीके से वो एब्जॉर्ब हो चुके होंगे जिस तरह से तुम लोग हो जो इतराज़ कर रहे थे। ये मुआविया की पॉलिसी के मोमिनी जो रसूलुल्लाह का ज़माना देखें, जो मनकुन तो मौला की हदीस सुने हुए हैं, जो अली का फ़ज़ाइल जानते हैं, उनको छोड़ दो, छोड़ नहीं दो, कत्ल करो, घर जलाओ, सारे टॉर्चर करो, लेकिन उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करो। सारा का सारा तुम्हारा जो फोकस है वो इनके बच्चे होने चाहिए। और मैंने कहा ना कि आज अगर आप देखेंगे आंखें खोल के तो यही हो रहा है। अब ज़रा सोचिए, एक मोमिन हालत यह है कि इतना सख्त मुआविया के ज़माने में सिस्टम, स्पाई सिस्टम, सद्दाम के बारे में कहा जाता है, सद्दाम ने किससे इंस्पायरेशन लिया? मुआविया से लिया। ये जितने लोग भी हैं, जितने जालिम दुश्मनान अहले बैत आपको आज के दौर में नज़र आते हैं, ये सब के सब वही मुआविया की पॉलिटिक्स को पढ़कर, और खाली पढ़ा नहीं है, बाकायदा। एक जुमला मैं अक्सर आशूर के दिन कहता हूँ, आज चले आज नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आज टाइम कम है, कि ये लोग हम और आप जिस तरह आका हुसैन के लिए कहते हैं ना, फया लैतनी कुंतो माकुम, ये लोग यजीद और मुआविया को देख के कहते थे सद्दाम जैसे, फया लैतनी कुंतो माकुम, काश हम तुम्हारे साथ होते। बल्कि वाकयात भी हैं वो जो इमाम ज़माना ने उस आदमी की हेल्प की थी और कहा था कि अगर कभी तुमसे कोई कहे कि ये ज़ख़म कहाँ लगा, कहना सिफीन में लगा। 600 साल बाद का वाकया, बहुत मशहूर है। अब मुझे नहीं पता, कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ मशहूर है, बाद में कोई सवाल कर देता है, आइए असल टॉपिक पर आ जाए। तो मुआविया ने एक तरफ बड़ों के लिए इतना मुश्किल कर दिया, भाई उसको सारा काम बच्चों पर करना, मोमिनीन कराम के बच्चे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उनके कनेक्शन को काटा जाए उनके पेरेंट्स से। तो इतना सख्त माहौल जैसे सद्दाम के बारे में था कि हत्ता हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में पता नहीं था कि ये कहीं सद्दाम की स्पाई तो नहीं है, और वाइफ को अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता। इतना ये जितने भी जालिम होते हैं, इनमें और भी मिडिल ईस्ट के हुक्मरान हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही ज़्यादा खुल के नहीं कहना चाहता। तो खुलासा ये कि घर के अंदर अली का नाम वो लोग भी नहीं ले सकते जो अली को की फजीलत और अजमत को जानते और अली की मारिफत रखते। अगर कभी शौहर को पता है कि मेरी बीवी भी मोमिना, या भाई को पता है कि मेरा भाई भी मोमिन है, और कोई बात करना है अली के बारे में तो किस तरह की जाती है? ये ज़माना आप देखिए जो 20 साल 41 हिजरा से 61 हिजरा तक मुआविया ने गुजारा है, पूरी एक जनरेशन जो दोनों मोहब्ब अहले बैत, दोनों को पता है एक दूसरे के बारे में। अभी तो मैंने कहा कि अक्सर को तो पता भी नहीं होता था मैं अली वाला हूँ, मेरा भाई। अब आप जाके देखिए तो उमर सात का अपना भाई हाशिम मिरकाल मौला का कितना मोहब्ब था, अली के नाम पे उसने जान दे के शहादत कबूल की, हाशिम मिरकाल। तो अब ये था कि हर फैमिली के अंदर ये था, लेकिन जहाँ दोनों को पता है कि हम दोनों भाई भाई, बाप बेटा, शौहर बीवी, वहाँ भी अगर अली का जिक्र करना होता था तो पहले तो घर के सारे दरवाजे और विंडोज़ जो है ना वो लॉक किए जाते थे, घर में से सबको निकाला जाता था, एटलीस्ट उस कमरे से जो घर के अंदर मेड है और जो स्लेव्स हैं उन सबको किसी काम से बाहर भेज दिया जाता था। और उसके बाद फिर शौहर बीवी से कहता था कि अपना कान मेरे मुँह के करीब लाओ, कोई बात करना अली के बारे में, और फिर भी अली का नाम लेने का की हिम्मत नहीं हो रही है। कहते हैं अबू जैनब, मेरे मौला का ये टाइटल अबू जैनब शियों के दरमियान एक कोड वर्ड बन के रह गया था। एक जुमला मैं इससे पहले पहली मजलिस में अर्ज कर चुका हूँ, अली, हसन, हुसैन, मोहम्मद, ये चार नाम पंजतन में वो हैं कि जो इससे पहले अरब में किसी के भी नहीं थे, जबकि अरबी के लफ्ज़ हैं ये, और बहुत ही सिंपल से लफ्ज है, किसी के नहीं थे। लेकिन फातिमा और ज़ैनब औरतों के दोनों नाम बहुत पहले से चले आ रहे हैं, काफिरों में भी थे, कुफर के ज़माने में भी थे, 100 साल पहले से थे। तो अबू ज़ैनब कहा जाता था, उस वक्त जहन शहजादी ज़ैनब की जानिब नहीं जाता था, ज़ैनब के नाम की सैकड़ों औरतें थीं जिसमें मुसलमान भी हैं, मोमिना भी हैं, अहले बैत के घराने की भी है, काफिरों की भी। तो अली के लिए अबू ज़ैनब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कब? पूरा घर बंद है, सबको बाहर निकाल दिया गया है, ग़ुलाम और कनीज़ों को छुट्टी दे दी गई है, पर्दे कर्टन डाल दिए गए हैं दरवाजे और खिड़की पर, घर में कोई नहीं है, शौहर बीवी के कान के करीब मुँह ले जाके कोई बात कहना चाहिए।

आ रहा है, वहां भी अली का नाम नहीं आ रहा है बल्कि अबू ज़ैनब। अब समझ में आ रहा, अब समझ में आ रहा कि पैगंबर ने कुछ एक स्टाइल की तीन हदीसें क्यों इरशाद फरमाई। पैगंबर, वही जो मेरा असल मौजू है, 21st सेंचुरी क्या, 31st सेंचुरी क्या, 41st सेंचुरी तक को देख के ये सारे इरशादात हमारे सामने पेश कर रहे हैं। कौन सी हदीस? बहुत ही मशहूर हदीस है, सुन लीजिए, ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। करबला का तो मकसद ही यही था, और वो ये है कि एक दिन पैगंबर के घर में मौला बैठे थे, घर से मतलब क्या, वो छोटे छोटे से हुजरे होते थे पैगंबर का हुजरा, और उनकी एक वाइफ हज़रत आयशा भी आई हुई, और पैगंबर के एक सहाबी यानी हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर भी आए हुए, और मौला भी बैठे हुए। अब बातें हो रही हैं चारों में, आजकल नहीं होता है, आजकल चार आदमी कितने ही क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, अगर एक जगह बैठे हो वो सब मैसेज चल रहे होते हैं स्मार्टफोन के ऊपर, आमने सामने कोई बात करने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल सामने बैठे, ये भी नहीं पूछेंगे आपको चाय चाहिए, मैसेज जाएगा। तो खैर, तो वहाँ उस वक्त चारों एक जगह बैठे हुए, हज़रत आयशा को एक अजीब चीज़ लगी, एक बिट ऑकवर्ड। अपने बाबा से कहा, बाबा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो हैं कभी मुझसे बात करते हैं, कभी रसूल से बात करते हैं, लेकिन आप देखते सिर्फ अली को हैं, बात यहाँ कर रहे हैं देख उधर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर ने मुस्कुरा के कहा कि मैंने चूँकि रसूल से सुना था, नज़र व इला वजह अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो मेरा दिल चाहता है जितनी देर यहाँ बैठा रहा हूँ इबादत करता रहूँ। बेटी ने क्या कहा, मशहूर रिवायतें, मैं तो इसको मुआविया के हवाले से इन रिवायतों को जमा करके एक रिजल्ट निकालना। बेटी ने क्या कहा हज़रत आयशा, उन्होंने कहा बाबा आपने सिर्फ इतना सुना, मैंने तो रसूल से ये भी सुना है कि रसूल ने फरमाया ज़िक्रो अली इबादा, अली का जिक्र करो ये भी इबादत है। पैगंबर ने बाप बेटी की बातचीत सुनी, पैगंबर ने इंटरफेयर किया और कहा कि तुमने सिर्फ इतना सुना है, मैंने तो यहाँ तक कहा है हुब्बो अली इबादा, दिल में अली की मोहब्बत रख लो तो ये भी एक इबादत है। तो जितनी क्या मतलब कि जितनी देर आप इस सफ़े हज़ा पे बैठे मजलिस सुन रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, अगर दिल में मोहब्बत अली है, इबादत का मीटर चल रहा है, वो एक अलग से आपको सवाब मिल रहा है मोहब्बत अली का। लेकिन जब ये तीनों हदीसें हमने पढ़ी और साथ में मुआविया का ज़माना देखा, मुआविया से लेके सद्दाम, लेकिन मैं स्टार्ट वहाँ से कर रहा हूँ, तो ज़माना देखा, अब समझ में आया कि अगर पैगंबर सिर्फ इतना फरमाते कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो क्या हम और आप कंप्लेन नहीं करते कि या रसूल अल्लाह आप तो 21st और 31st और 41st सेंचुरी के भी रसूल हैं, तो इबादत खाली उन लोगों को दे के जा रहे हैं जो 41 हिजरा तक अली के ज़माने तक थे, 40 हिजरा तक। रसूल आप हमारे भी हैं आज के ज़माने के, जैसा मैंने कहा मार्स जुपिटर सैटर्न कहाँ कहाँ हम जाएंगे वहाँ भी रसूल हैं, लेकिन ये इबादत, बाकी हर इबादत आपने हम सबको दी है, नमाज उनको भी दी हमको भी दी, रोज़ा उनको भी दिया हमको भी दिया, हिजाब उनको भी दिया हमको भी दिया, तिलावत कुरान उनको भी दी हमको भी दी, हज उनको भी दिया हमको भी दिया, तमाम इबादतें, ये इतनी बड़ी इबादत अपने ज़माने के लोगों को दे के गए हमको छोड़ दिया। तो पैगंबर ने कहा नहीं, मैं आदिल खुदा का आदिल नुमाइंदा हूँ, कयामत तक का दीन लेके आया हूँ, 21st क्या 31st क्या 41st सेंचुरी के मोमिन को भी महरूम नहीं करूँगा जो अली के ज़माने में मौजूद हैं, वो अली के चेहरे को देख के इबादत का सवाब लें, जो अली के बाद आ रहे हैं अगर चेहरा नहीं देख सकते तो अली का जिक्र करके इबादत का सवाब लें। एक बार मुआविया के ज़माने का मोमिन खड़ा होगा और कहेगा या रसूल अल्लाह हमारी भी कंप्लेन सुन लीजिए कि चलें उन लोगों ने अली को देखा, बाद के लोगों ने अली का जिक्र किया, हम क्या करें जो इतने सख्त दुश्मन अली के ज़माने में आए हैं, हमारा कसूर तो नहीं है ना, अल्लाह ने हमसे तो नहीं पूछा तुम्हें कहाँ पैदा होना है, हमने कहा मुआविया के दौर में, हमें तो अल्लाह ने इस दौर में पैदा किया, हम तो अली का जिक्र भी नहीं कर सकते, तो क्या हम इस इबादत से महरूम रहेंगे? पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, तुम भी महरूम नहीं रहोगे जो अली के ज़माने में हैं, अली का चेहरा देखकर इबादत का सवाब लेंगे, जो अली के बाद हैं अली का जिक्र करके इबादत का सवाब लेंगे, और जो मुआविया और सद्दाम जैसों के ज़माने में है वो दिल में अली की मोहब्बत रखकर वही सवाब हासिल करेंगे। तो अब ये जो तीन हदीसें बहुत मशहूर फ़ज़ाइल की हैं, लेकिन इसके अंदर पूरी इस्लामिक हिस्ट्री आ गई पैगंबर के ज़माने से।

एक एक कयामत तक हालात माहौल जमाना सर्कमस्टांसेस कैसे ही चेंज क्यों ना हो जाए, हर चीज़ के लिए इस्लाम ने हमें एक गाइडेंस दे दी है। तो जैसे फजाइल के हवाले से वैसे ही वाजिबात व हराम के हवाले से। बाद में तो हम मुआविया का ज़माना वो था कि जहाँ वाकान न चेहरा अली की ज़ियारत मुमकिन हो रही थी, और क्योंकि मुआविया की प्लानिंग से अली शहीद कर दिए गए। इब्ने मुल्जिम के पीछे किसका हाथ था तफसील में नहीं जा रहा हूँ, और ना जिक्र अली मुमकिन था। लेकिन इसके बाद ये तो कर दिया उसने उन लोगों के लिए जो अली का ज़माना देखे हुए। भाई मैंने कहा कि मुआविया का में तो के पीरियड में तो वो लोग भी थे जिन्होंने रसूल खुदा का ज़माना देखा था, लेकिन एटलीस्ट अली का ज़माना देखे हुए तो सब लोग थे। 40 हिजरा में अली की शहादत हुई है, इस वक्त मुआविया हुकूमत कर रहा है शाम में, और फिर 40 से लेकर 60 तक तो सारे आलम इस्लाम में। तो अली का ज़माना देखे हुए समझदार हैं, मैच्योर हैं, बड़े हैं आपकी तरह से, यानी सीनियर, वो तो जानते हैं। उनके लिए नाम अली इतना मुश्किल है और उसका सारा फोकस है बच्चों पर, इनको किस तरह बहका। अब ज़रा देखिए, वक्त कम रह गया, मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। मुआविया के अहकाम आ गए, ऑर्डर्स आ गए, हर नमाज के, हर नहीं ईशा के, ईशा की नमाज के अंदर एक कुनूत पढ़ा जाएगा, उसमें अली का नाम लेकर अली पर नऊज़ु बिल्ला लानत की जाएगी, वो लफ्ज़ आएगा। हर जुमे की तकरीर में, हर जुमे के खुतबे में इख्तिताम होगा, जब जो खुतबा जब ख़त्म हो रहा होता, खुतबा ख़त्म हो रहा होगा तो इख्तिताम होगा अली का नाम लेकर अली और औलाद अली पर। अब ये लफ्ज़ मेरी ज़बान पे नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ, ये मजालिम न बताए जाएँ तो हमें जो मैसेज देना है वो कैसे पहुँचे, अली पे लानत की जाएगी। और फिर दो उसने ऐसे काम किए जो बज़ाहिर बेनिफिट के काम है बच्चों के लिए। मेरा अंदाज़ा है कि इंग्लैंड में भी कोई ऐसा सिस्टम होगा कि चाइल्ड बेनिफिट पेरेंट्स को मिलता होगा, या पूरे वेस्ट में जो एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे एजुकेशन फ्री होती है एक सर्टेन स्टेज तक। ये मुआविया ने सिलसिला शुरू किया था, मुआविया ने, उसने क्या किया, पहले काम उसने ये किया कि हर घर में जहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, टॉय खिलौना। अच्छा, पुराने ज़माने के अंदर ये टॉय की इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो थी नहीं, ये गेम्स में वेम्स तो नहीं थे। उस ज़माने में बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉयज़ जो थे वो होते थे जानवर, आज भी पेट बच्चों के लिए तो एक चीज़ होती है, उस ज़माने में तो यही होता था। बकरी का बच्चा हर घर में भिजवाया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिलता है। तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो अब ये बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, इससे छोटे बच्चे हैं ना, वो बिल्ली के बच्चे से इससे अच्छा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक बकरी का बच्चा भिजवाया जाएगा। जब ये बकरी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये हमारा बच्चा जो है इंसान का बच्चा हो, बकरी का नहीं, वो हो गया 4-5 साल का या उससे थोड़ा छोटा, बहुत ज़्यादा वो अटैच हो गया, वो रात को सोएगा, पेरेंट्स को हुक्म है कि रात को इस बकरी के बच्चे को ज़बह कर देना, इसकी गर्दन काट देना और इसको इसी तरह रहन देना। बच्चे का नेचर है, जब सुबह उठता है ना तो जो उसकी फेवरेट चीज़ होती है दौड़ के जाता। अब आजकल के बच्चे मैंने देखा है, कौन से बच्चे, एक एक साल के बच्चे वो स्मार्टफोन की तरफ दौड़ के जाते हैं, गेम शुरू कर देते हैं, इतने से बच्चे, इतने मुन्ने से बच्चे हैं, लेकिन वो सिस्टम, लेकिन आया कहाँ से, मुआविया से। वो बच्चा उठा सुबह के वक्त, अभी इसमें नमाज रोज़ा तो कुछ है नहीं ना, दौड़ के गया बकरी के बच्चे से खेलने, देखा वो तो बकरी का बच्चा मरा पड़ा, खाली मरा नहीं है, गर्दन कटी है, खून बह रहा। घबरा के वालिदैन से कहिए क्या, रोने लगा। बाप को ऑर्डर है, माँ को ऑर्डर है, उससे कह दो कि रात को अली आए थे और तुम्हारे इस खिलौने को तोड़ के गए। अब आप अपने दिमाग से मत सोचिए, और इंशाल्लाह हमारे आशूरा में आप अपनी ये हसरत पूरी कीजिएगा। तो अभी बयान जो है वो आगे बढ़ रहा है कि अब ये कि बच्चे के जहन से सोचिए कि उसका खिलौना 4-5 साल इतना अटैच रहा वो अपने इस पेट से, जानवर से, और उसको मैसेज मिला कि अली आए थे और उसको मार के चले गए। उधर आइए, स्कूल सिस्टम, पूरा एक स्कूल का उसने सिस्टम बनाया। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि एजुकेशन सिस्टम वेस्ट में रह के हमें अपना कैसे बनाना है, लेकिन इतनी सारी बातें तो नहीं आ सकती है ना, बहुत मुख्तसर बात। और उसने कहा कि इसके अंदर जो स्कूल है तो सुबह से शाम तक है, इसमें फ्री लंच गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको आज लग रहा है ना कि ये तो आज का सिस्टम है, नहीं, मुआविया का सिस्टम। और उस सिस्टम से मुआविया जो बेनिफिट लेना चाह रहा था, आज इस

टाइप के जो सिस्टम है उससे ये सिस्टम चलाने वाले अपना बेनिफिट लेते हैं, वो एक अलग चीज़ कि कैसे मुसलमान बच्चे को नाम उसका मुसलमान रहे बाकी उसको अंदर से बिल्कुल नॉन मुस्लिम बना देना, बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ 3 या 4 मिनट मेरे पास बच रहे हैं, मैं तो इसमें कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, जल्दी जल्दी बात ख़त्म होगी। अब यह है कि फ्री लंच और सुबह से शाम तक बच्चे को स्कूल में रहना, बच्चे जाते हैं खुशी से शौक से, उसके बाद लंच का टाइम आता, बेहतरीन जो ज़माने के एतबार से खाने जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो उसके अपने वालिदैन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर मोमिन घराने, क्योंकि साहिबान ईमान का शियों का कत्ल भी हो रहा है और उनके बिजनेसेस भी तबाह किए जा रहे हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम को भी ख़त्म किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से जो बेनिफिट मिलते हैं उसमें पहला ऑर्डर है कि जो अली वाला है उसका नाम उस लिस्ट से काट दो। ये सारी चीज़ें आप मजलिसों में सुनते आए हैं तो मैं बहुत इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब लंच का टाइम आया, सुबह से बच्चा भूखा बैठा है, प्यासा भी है, वहाँ का माहौल, अरब की गर्मी, पूरे ये इस्लामी दुनिया का सिस्टम, और वो सुफरा बिछाया गया और उस पर बेहतरीन खाने आ गए। जो खाने आपको पसंद है वो आपके बच्चों को पसंद नहीं है, बच्चों की पसंद अलग होती है। तो आपको आज भी मेरे ख्याल में खिचड़ी बहुत पसंद होगी, बच्चे को तो चाहिए ही नहीं है, उसको कोई बर्गर चाहिए होगा या पिज़्ज़ा चाहिए होगा, या हर ज़माने के तरीके बदलते हैं, जो भी उसको पसंद है वो रखा। जैसे ही दस्तरखान पे बिछाया गया खाना, हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह, बच्चों से कहा जाता है अली पे लानत करके ये खाना खाओ। और अगर किसी बच्चे ने अपने घर की वजह से, अपने घर पेरेंट्स की वजह से मना कर दिया, उससे कहा जाता है यहाँ बैठोगे कोई चीज़ खा नहीं सकते। अब देखिए, बड़े आदमी रिजिस्ट नहीं कर सकते, कहाँ छोटा बच्चा, वो देख रहा है कि मैंने ये जुमला नहीं कहा तो मेरे जितने क्लास फेलोज हैं वो सबको बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं, मुझे शाम तक फाके के आलम में रहना, एक दिन दो दिन, उसके जहन में तो ये ख्याल आया ना। अब ये बात मैं 14-15 साल के बच्चों की नहीं कर रहा हूँ जो फिर भी मैच्योर होती, तो बात हो रही है 3 साल के बच्चे की, 4 साल की। उसके जहन में आया कि अली उसका नाम है कि अगर उस पर लानत करो तो बेहतरीन तुम्हें पसंदीदा ग़िज़ा मिलती है, और अगर लानत ना करो तो सारा दिन फाका करना पड़ता। बड़े जो हैं वो स्लिप हो जाते हैं, ईमान छोड़ देते हैं, ये तो छोटे बच्चे। अब ये पूरा माहौल बनाया जा रहा, जहाँ पे ये बच्चा घर में आता है तो वहाँ अली को बुरा कहा जा रहा, ये बच्चा मस्जिद में जाता है तो वहाँ अली को बुरा कहा जाता, ये बच्चा जुमे की जामे मस्जिद में जाता है वहाँ अली को बुरा कहा जाता, ये बच्चा अपने खेलने की जगह पे जाता है तो वो अपने खिलौने को टूटा देखता है अली को बुरा कहा जा रहा, ये बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वहाँ अली को बुरा कहा जा रहा है, और 20 साल ये सिस्टम मुआविया ने बना के रखा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहूँगा, और अभी मेरा मौजू जो है बहुत ज़्यादा, यानी जल्दी जल्दी मैं ख़त्म तो नहीं हुआ, बस यहीं पे मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी बातें कल होंगी शब आशूर, लेकिन एक छोटी सी बात कह दूँ, और वो ये कि इसके सामने जब तक अली थे, भाई अली की खिलाफत तो 5 साल से कुछ कम तक रही ज़ाहिरी, वरना अली तो कायनात के बादशाह हमेशा से और हमेशा रहेंगे, लेकिन ज़ाहिरी वो जो ज़माना था उस वक्त मुआविया भी था, फिर मुआविया को बाद में 20 साल मिले अलग से, ये जो 4-5 साल थे उसके अंदर आपको ये दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की सीरत नज़र आएगी। छोटी सी बात, जब जंग सिफीन हुई ना तो मुआविया की फौज पहले सिफीन में पहुंच गई, और फिर देखिए गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में नहीं, रिएक्शन में कभी आदमी जो है ना कहता है मैं नहीं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन पहले उसने ये काम किया तो अब कम अज़ कम मुझे रिप्लाई का तो हक है ना। सिफीन में पहुंच गई मुआविया की फौज, मशहूर वाकया है, नहजुल बलागा में पूरा इसका खुतबा है, तो उसने दरिया पे कब्ज़ा कर लिया, पानी बंद कर दिया, करबला में पानी बाद में बंद हुआ, पहले अली के लश्कर पे ये पानी बंद हुआ, तो अली ने मालिक अश्तर को पहले भेजा हुआ था, वो वहाँ थे लेकिन उनको ऑर्डर था कि जंग नहीं करना, पानी बंद हो गया, और उसके बाद जब मौला आए तो पता चला कि उनकी सारी फौज प्यासी है जो मालिक अश्तर के साथ आए थे, और जो अली के साथ आए तो पानी नहीं, और वहाँ पे मुआविया का ऑर्डर है कि इन लोगों को प्यास से हमको मार देना। फिर मौला ने खुतबा दिया और उसके नतीजे में पहले सासा इब्ने सोहान को भेजा अपना मैसेंजर बनाकर, जिनका मस्जिद सहला के सामने जिनकी मस्जिद है, लेकिन इसके बाद फिर मौला ने कहा जंग करो, दरिया पे कब्ज़ा कर लिया,
جب دریا پہ قبضہ کر لیا اور فرات واپس مل گیا تو

साल का जवान हमारे यूथ के लिए रोल मॉडल, आजकल की दुनिया के एंटरटेनमेंट में फंस जाने वाले बच्चे जरा देखें, 18 साल का जवान अकबर कहता है। अभी तो आगाज है शबाब का, दुनिया के मजों का, लेकिन अकबर कहते हैं बाबा मैं तो कब से इंतजार कर रहा था कि आप मुझे मैदान में जाने का हुक्म दे। ये कह के अकबर घोड़े पे सवार हुए, मख्तल की जानिब चलना चाहते, हुसैन ने रोक लिया। अकबर बेटा कहाँ जा रहा? कहा बाबा आपने मुझे हुक्म दिया है, मैं तो इंतजार कर रहा था। कहा वो मैंने कहा तू इस तरह नहीं जा सकता है, पहले जाके खानदान की सारी खवातीन को खुदा हाफिज कहे, फिर तुझे मख्तल में जाने की इजाजत। आप सोच नहीं सकते अली अकबर के लिए यजीद की 30,000 की फौज का मुकाबला करना बहुत आसान है। हैदर करार का पोता है ना, फतेह खैबर का पोता है ना, 30,000 के लश्कर का मुकाबला करना आसान, लेकिन माँ से जाके कहना कि अम्मा अब मेरा लाशा देखने को तैयार हो जा, बहनों से जाके कहना कि अब अपने भाई की मैयत को देखने को तैयार हो जा, फूफी से जाके कहना, अकबर का असल इम्तिहान ये था और हुसैन ने पहला इम्तिहान ये लिया। अब अली अकबर खेमे का पर्दा हटा के सहन खेमा में दाखिल होते हैं, वो जो मेन गेट पे पर्दा है वो हटा के सहन खेमा में माँ की तरफ जा रहे हैं, माँ के खेमे में जा रहे हैं, दिल में सोचते जा रहे हैं माँ को कैसे ये पैगाम दूंगा कि अम्मा तेरा 18 साल का जवान मरने जा रहा। मेरे उस्ताद ये जुमले कहते थे, जब उम्मे लैला के खेमे में पहुंचे तो एक अजीब मंजर देखा कि मुसल्ला बिछा के उम्मे लैला बैठी। अकबर घबरा गए, मादर गरामी जुहरैन की नमाज तो पढ़ी जा चुकी है, मगरबैन में बहुत वक्त बाकी, ये कौन सी नमाज के लिए आपने मुसल्ला बिछाया? का अकबर तुझे पता है जालिम से मेरा रिश्ता है, मैंने अल्लाह से नजर की है और मन्नत मानी है, मेरे अकबर का लाशा जल्दी से आए तो मैं 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़ूं। यह है करबला की मानी। अली अकबर ने मुस्कुरा के कहा अम्मा आपने तो मेरा सबसे बड़ा मसाला हल कर दिया, मैं तो यह सोच के आया था कि किस तरह से यह पैगाम आपको दूंगा और आप कैसे बर्दाश्त करेंगी। लैला ने कहा अकबर बेटा जल्दी से जा, मुझे अपनी मन्नत को पूरा करना है। अली अकबर बाहर, और अब अली अकबर कायनात का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान अली अकबर के लिए हो, फूफी जैनब से कैसे जाकर कहें। अकबर यकीनन लैला का बेटा है, लेकिन शुरू से ही जैनब ने अकबर को अपनी गोद में ले लिया था। हुसैन से रिक्वेस्ट की थी, उस वक्त तक जैनब के यहाँ औनो मोहम्मद पैदा नहीं हुए, कहा भैया अपना ये बेटा मुझे दे दे, तेरे पास तो एक बेटा चौथे इमाम तो पैदा हो चुके हैं। हुसैन मसा मुहावरतन कह रहा हूँ, जैनब तो अगर जान भी मांगे तो हुसैन जान दे दे, का अकबर को ले जा। अकबर जैनब के पास ही रहा, बचपना वहीं गुजरा, जवानी का आगाज वहीं हुआ, अकबर के तमाम मामलात को जैनब देखती, यहाँ तक कि अरब की औरतों में अकबर को कहते थे अली इब्ने जैनब, जैनब का बेटा अकबर। माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली फूफी अकबर फूफी के खेमे में दाखिल हुए, अब उनसे कैसे कहूँ। इराक़ के एक बहुत ही मशहूर खतीब है अब्दुलरज़ाक अल-मुकर्रम, उन्होंने एक मख्तल भी लिखा, हमारे अथेंटिक मकातिल में से एक वो है, उसके अंदर ये रिवायत, अकबर खेमे में दाखिल हुए, अब फूफी जैनब से कैसे कहूँ कि मैं मरने जा रहा हूँ। गए जैनब खेमे में बैठी, अकबर जाके जैनब की गोद में सर रख के लेट गए। माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली जैनब प्यार आ गया, चुनाचे अकबर के बालों में उंगलियों से कंघी करने लगी और कहा अकबर बेटा इस वक्त तो जंग जारी है, यहाँ क्यों आ गया? कहा फूफी अम्मा अचानक एक मसाला पेश आ गया और वो मैं आपसे उसका जवाब लेने आया हूँ। जैनब ने कहा अकबर तेरा बाबा इमाम वक्त है, मसाले का जवाब तो वो देगा। कहा कि नहीं, आपको पता है जब से मैंने मसाला पूछना शुरू किया हमेशा आपसे पूछा, तो ये मसाला भी मुझे आपसे पूछना। जैनब ने कहा अच्छा बेटा जल्दी से पूछ क्या मसाला। का सिर्फ इतना बता दीजिए आपका रुतबा बुलंद है कि मेरी दादी फातिमा जहरा का रुतबा बुलंद। अल्लाह जैनब की हालत, माँ का नाम सुना, बेचैन और बेकरार होके अपनी जगह से खड़ी हो गई। अकबर बेटा ये क्या सवाल कर लिया, कहाँ शहजादी फातिमा, कहाँ मैं उनकी ये कनीज। अकबर ने कहा फूफी अम्मा अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, आज फातिमा के बेटे पर अपने इस बेटे को कुर्बान कर दे।
زینب نے کہا اکبر کسی اور طرح سے اگر میرے مجھے تجھے تیرے مرنے کی خبر آتی تو شاید تیری پھوپھی بھی مر جاتی مگر اس طرح سے تو نے کہا جا

जा अम्मा फातिमा के लाल पे मेरा लाल कुर्बान। अकबर बाहर निकले। पूरे वाकया करबला में ये ओनली वाकया कि दुश्मन लश्कर यजीद कहता है हमीद इब्न मुस्लिम कि मैं देखता था कि ये वाहिद ओनली मुजाहिद है कि जब ये बाहर आता था खेमे का पर्दा उठता था फिर गिर जाता था, पर्दा उठता था फिर गिर जाता था। होता क्या था, अकबर बाहर आना चाहते हैं, कभी कोई फूफी आके लिपट जाती है, अकबर बेटा एक बार तो अपनी जियारत और करा दे। कभी कोई बहन आके लिपट जाती है, अकबर भैया एक बार तो मुझे और अपनी जियारत करा दे। यहाँ तक कि हुसैन सहने खेमा में आए, कहा बीबियों अकबर का रास्ता मत रोको, बाहर इंतज़ार हो रहा है। अकबर घोड़े पे सवार हुए तो पहली बात, करबला का कोई मुजाहिद ऐसा नहीं है इतनी बार खेमे का पर्दा उठा और गिरा। अकबर घोड़े पे सवार मख्तल की जानिब चले, वक्त बहुत गुजर गया। अकबर का नाम ले, अजान अकबर याद आती है, अजान अकबर याद आती है तो नमाज का वक्त याद आता है। वह जल्दी जल्दी आखिरी जुमले, अकबर चले चले अभी थोड़ी दूर चले होंगे और उधर हुसैन, और कोई ऐसा मुजाहिद था, हुसैन एक मर्तबा हाथ उठा के कहते हैं खुदा बंदा मैं इस वक्त उसको मख्तल में भेज रहा हूँ जो सूरत में भी मेरे नाना की शबी है, सीरत में भी मेरे नाना की शबी है। अब फिर क्या कहा, आए पिसारे साथ तू देख रहा है मेरा बेटा मरने जा रहा है, खुदा तेरी नस्ल को मुनक़ता करे। और किसी मुजाहिद के वक्त इस तरह से आका ने उमर साथ को बद्दुआ दी थी। और इधर अकबर ने घोड़ा आगे बढ़ाया, घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ रहा है, अकबर को ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आ रहा है। अरे मुड़ के देखा तो क्या देखा, मेरा बूढ़ा बाबा पैदल है, बुढ़ापा है पैदल है और मेरे घोड़े के पीछे पीछे इस तरह चल रहे कि जैसे जैसे घोड़े की स्पीड बढ़ रही है हुसैन अपनी स्पीड बढ़ा रहे। अकबर ने जल्दी से घोड़ा रोका, एक मर्तबा हाथ जोड़े कहा बाबा ये आप क्या कर रहे हैं इस तरह मेरी सवारी के पीछे, ये जुमला भी कभी सुना आपने। हुसैन ने कहा अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है इसलिए तुझे नहीं पता तेरे बूढ़े बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। अकबर ने हाथ जोड़ के कहा लेकिन बाबा अगर इस तरह आप आए तो मैं तो मख्तल में ना जा सकूंगा। हुसैन ने कहा अच्छा जा, मैंने तुझे खुदा हाफिज कहा वो बहुत जल्दी बात ख़त्म करना है, अब ये सुन लीजिए सुन लीजिए। अकबर घोड़े पे सवार होके चले, हुसैन करीब में एक टीले तिल्ले पे जाके बैठ गए, ज़ैनब दर खेमा पर पर्दा पकड़ के खड़ी हो गई और उधर उम्मे लैला अपने मुसल्ले पे खड़ी हो गई। अब मंजर क्या बना, अकबर दुश्मन का मुकाबला कर रहे, अकबर की निगाहें फौज पर हैं, हुसैन की निगाहें अकबर पर हैं, जैनब की निगाहें हुसैन पर हैं, लैला की निगाहें जैनब पर हैं। फातह खैबर के पोते का जिहाद मुकम्मल हुआ, अकबर घोड़े से जमीन करबला पे गिरे, हुसैन टीले से गिरे, जैनब दर खेमा गिरी, उम्मे लैला शुक्र के सिजदे में गिरी, शुक्र अल्लाह मेरी कमाई काम आ गई, मेरा मौला गिरा, मेरा मौला संभला, मेरा मौला उठा, मेरा मौला चला जहाज मकाम अली अकबर है। मगर क्या कहा, उदऊनी या बुनैया, बेटा मुझे पुकार, इस वक्त तेरे बाबा को कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ देर के लिए हुसैन की बीनाई चली गई और अकबर ने कहा इलैया इलैया बाबा इधर आइए। हुसैन आवाज़ सुन के चले, अकबर के करीब पहुँचे, अकबर को बाद में देखा, एक मरतबा सीने से निकलने वाला खून पहले नजर आ गया। खुदा किसी बूढ़े बाप को जवान बेटे की ये हालत न दिखाए। वह ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। एक बार हुसैन ने अकबर की गर्दन के नीचे एक हाथ रखा, एक हाथ अकबर के पैरों के नीचे रखा, अकबर को उठा के ले जाना चाहते हैं ना खेमे तक, लेकिन अल्लाह मेरा ये बूढ़ा इमाम जवान उठाया न गया, थोड़ा सा उठाया फिर ज़मीन पर रख दिया। तीन बार हुसैन जैसे ताकतवर शुजा ने कोशिश की, कहा अकबर बेटा तुम भी तो अपने बाप की मदद करो। अकबर ने कहा बाबा मैं क्या मदद करूं, कहा जो तुमने दोनों हाथ सीने पे रखे हैं ना ये हाथ मेरी गर्दन में डाल दो। अकबर ने एक हाथ सीने से हटाया, हुसैन की गर्दन में डाला, हुसैन ने कहा बेटा ये दूसरा हाथ भी तो हटाओ, कहा बाबा ये कलेजे से हटाना नहीं चाहता। भाई इतना सुनना है, हुसैन दो कदम पीछे आ गए, अकबर ये तूने क्या कह दिया, क्या तुझे नहीं पता तेरा बाप कितना साबिर है, ये हाथ भी सीने से हटा। बाप का हुक्म आ गया, अकबर ने दूसरा हाथ सीने से हटाया। अरे बर्छी का टूटा हुआ फाल सीना अकबर में पेवस है। हुसैन ने कहा अकबर बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। ये कह के मेरा मौला अकबर के सीने के करीब इस

बैठ गया जैसे आप नमाज के तशहुद में बैठते हैं और एक बार बर्छी के फल को पकड़ा। मेरा दिल चाहता है आवाज दूं, या रसूल अल्लाह जरा जल्दी से करबला में आइए, मगर अकेले नहीं आइएगा, खलील खुदा इब्राहिम को लेके आइएगा। ऐ इब्राहिम देख, ये करबला का इस्माइल है, बूढ़े बाप की आंखों में पट्टी नहीं है, हाथों में राशा नहीं है। और इधर हुसैन ने बर्छी के फल पे हाथ रखा। मेरा दिल कहता कि एक बार पलट के नजब को तो देखा होगा और कहा होगा, या अली मदद, बाबा आज अपने हुसैन की मदद को आइए, जवान के सीने से बर्छी निकालना है। एक बार हुसैन ने बर्छी को निकालना चाहा, बर्छी हिली, बर्छी अकबर के कलेजे में है, कलेजा हिला, कलेजा हिलना है अकबर का जिस्म हिला, जिस्म का हिलना है जमीन, करबला हिली, खेमे हिले, पर्दे हिले, जैनब की आवाज़ आई, भैया बहन तेरी मदद को आ रही है। हुसैन ने अकबर का लाशा छोड़ दिया, जैनब खेमे से बाहर ना आना, तेरे पर्दे पे मेरा अकबर कुर्बान। और मौला थोड़ी देर बाद शाम गरीब आई, खेमे जले, जैनब की चादर छिनी, जैनब ने कहा वाह अकबरा, अरे हुसैन अकबर का लाशा ले जा रहे हैं, यहाँ ताबूत आ रहा है, जल्दी से खड़े हो जाइए, शबी अली अकबर की जियारत।

0: गलामा बाए राखी दीदा बाबा मारा चेला सलाम कबूल करो। गरीब हुसैन जमीन ऊपर बैसी गया, बेटा मारी आंखों नो नूर, लाशे का पता दो या आप मिला दो, ऐ कूफियो मुझको मेरे अकबर से मिला दो। अजादारो अली अकबर ना लाशा सुधी पहुंचवा माते कतलिक जगह ऊपर तमारा गरीब हुसैन परी गया छे। आखिर मां कोई मदद करवा वारो नथी, अकबर नो रोत गोरा ने जोया, लाशा पासे पहुंचा ने अल्लाह कोई गरीब बाप ने जवान बेटा ने आवो लाशो ना देखा रे। अजादारो बस एक बोल आखरी वसीयत सांभळी लो अने रुखसती। अजादारो हुसैन अली अकबर पासे पहुंचा अने इना माथा ने खोरा ऊपर राखा, सू जोया अली अकबर नो एक हाथ छे जे छाती ऊपर छे। करबला फातिमा नो लाल नो केवो इम्तिहान ले रही छे। हुसैन के छे बेटा बेटा तमारा हाथ छाती ऊपर शा माटे छे, तो कि ना बाबा काई नथे, बाबा बाबा ही मज रेवा दियो, तो के बेटा तमारा हाथ ने हटा हो, तो के नहीं बाबा नहीं, तो के बेटा तमारा हाथ ने छाती थी हटाओ, तो के बाबा तमे इसरार नहीं करो, तमे नहीं जोई शको, तो के बेटा मारा हक ना वास्ता आ हाथ ने छाती थी हटारो। बोलो मां बयान करे छे अली अकबर मजबूरी मां हाथ उठाएवा, कई दिल थी हुसैन जोया नेजानी अनी टूटेली अकबर ने छाती मां, बाबा बहुज तकलीफ थई रही छे। हुसैन हुसैन ई बरछी ना फल या तो ई नेजा ना कटका ने काढवानी कोशिश कईरा, अकबर नो शरीर भी साथे बलन थियो, बाबा दर्द थई रह्यो छे। अजादारो हुसैन कोशिश कईरा, आखिर मां जमनी तरफ जोया डाबी तरफ जोया, कोई मदद करवा वारो नथी। अजादारो हुसैन अकबर ना सीना ऊपर हाथ राखे छे, एक हाथ थी जे छे ना टूटेली नेजानी अनी ने पकड़े छे, याली मदद। अजादारो परातो नथी इची टूटेली नेजी ने अनी निकेरी केवी हालत मा निकेरी। हुसैन ने कहे पेरो या बुनैया अल दुनिया बाद कलफा, तारी शहादत पछी जिंदगानी दुनिया ऊपर खाक, जवान दिखरो जईफ बाप निसा में शहीद था, हुसैन थी लाशो नथी उठातो, लाशा उठाईवा बे कदम चाली जमीन ऊपर राखा, फरीवार उठाईवा बे कदम चाली जमीन ऊपर राखा, फुरा तरफ जोया अब्बास अकबर जवान छे हूँ ज़ईफ छु, भाई मारी मदद का। आखिर मां कोशिश थी खैमानी सामने आईवा, बचावो आवो तुम्हारा भाई अकबर ना लाशा उठावा मां, अरे उसे नी मदद करो।
1: मेरा

दूसरी जगह इमाम ने कहा कि कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो तुम देखते हो और जिसके अंदर दर्स और लेसन्स पोशीदा ना हो। हम करबला अहले बैत मौलाए कायनात ये तारीख इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें सवाब सिर्फ चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि हम एनालाइज कर सकें, उलिल अबसार बन सकें, वो तारीख में जो मिस्टेक्स हुई हैं उसे रिपीट ना करें, इसलिए पढ़ते हैं, इबरत के लिए पढ़ते हैं। ला इबरत इन, खुद कुरान की आयत है कि इन वाकयात में इबरत है, लेसन्स हैं। पहला वाकया जंगे सिफीन, जंगे सिफीन में दो गिरोह और बबसीरत ना होना कौम का मौला अली को मजबूर करता है जंगे सिफीन में। आगे चलती कैरेक्टर्स को एनालाइज करें, तारीख में जब आप कैरेक्टर्स को देखें तो कैरेक्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करें और देखें कि खुदा ना करे हम उस कैरेक्टर को तो रिपीट नहीं कर रहे, और अपने जमाने में उन कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें क्योंकि हर जमाने में ये कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। अजीजाने गिरामी, इसी तरीके से हम आते हैं दूसरा एक तारीख का हसास मोड़, वो कूफा में है। रहबरे मौजम शहीद तहलील करते हैं कि कूफा के हालात क्या थे और कूफा में क्या हुआ। आप गौर करें, मैं आपके सामने कुछ चीजें एक एक करके पेश करता हूं। सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, देखें बबसीरत जो इमाम का साथी होता है वो विलायत मदार होता है, वो अहले बैत के हुक्म के सामने सवाल नहीं करता, सबमिट करता है। दो कैरेक्टर्स अभी आपके सामने पेश करूंगा, आप दोनों को कंपेयर करें, एक हानी इब्ने उरवा और एक सुलेमान सुरद खुजाई, दोनों कैरेक्टर कूफा में हैं। सुलेमान वो शख्स है कि जब सबसे पहले कूफा में पता चला कि मुआविया मारा गया, ये मुआविया मर गया, तो सबसे पहले जुलूस निकालने वाला, सबके घर पे जाके दावत देने वाला, सबको खत लिखने वाला, सबसे पहली मीटिंग करने वाला, और उसी के घर में मीटिंग हुई सबसे पहले खुतबा और तकरीर देने वाला, और वो खत में सबसे पहले साइन करने वाला सुलेमान इब्ने सुरद खजाई है। कितना जज्बा दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हसास मौका आया यही सुलेमान बहाना बना के कि मुझे बाहर नहीं आने दिया गया, घर में बैठा रहा। अब इसका मैं हजरत हुर पे भी आऊंगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा जाएं। देखें जब इसकी पीछे जाके हिस्ट्री देखते हैं तो जब जंग जमल होती है, ये सुलेमान अपने आप को प्रेजेंट ऐसा करता था कि मैं शिया हूं अली का, और बड़ी शख्सियत थी, यानी ये अगर बोलता तो कम से कम तवाबीन का जो लश्कर इसने बनाया था उसमें कम से कम 4000 लोग थे, कम से कम, आम इंसान नहीं था। तारीख में यही इन्फ्लुएंशियल लोग जब गलत डिसीजन लेते हैं, खवास गलत डिसीजन लेते हैं, तो पूरी कौम को नुकसान उठाना पड़ता है। जंगे जमल में सुलेमान कहता है कि कैसे मैं लड़ सकता हूं, सामने रसूल की बीवी है, मैं रसूल की बीवी से थोड़ी ना लड़ सकता हूं। नहीं जाता जल लड़ने, फिर मौला अली से मिलने आता है तो मौला अली उसे डांटते हैं, कहते हैं तू क्यों नहीं आया,

जब मौला अली डांटते हैं तो इमाम हसन से जाके कंप्लेन करता है कि मुझे मौला अली ने डांटा। फिर जंगे सिफीन में आया मदद करने के लिए, लड़ने के लिए आया। जब जंगे सिफीन में मदद के लिए आया और उसके बाद जब खवारिज का मसला आया, पेश आया कि खवारिज जो ये कहने लगे कि भाई मौला अली मुआविया से लड़ना जरूरी है, तो अजीजाने गिरामी यही सुलेमान नौजुबिल्ला इमाम हसन को कहता हुआ नजर आया कि खुदा इमाम हसन को क्या करे, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, ऐ वो शख्स जिसने मोमिनीन को जलील किया है। ये फ्लक्चुएटिंग कैरेक्टर्स हैं। यहां पर ये खुद डिसाइड करते हैं, अहले बैत के सामने सबमिट नहीं होते, खुद को इतना एक्चुअल इंटेलेक्चुअल समझते हैं कि हम फैसला करेंगे कि मर्जे तकलीद ने सही कहा कि नहीं, रहबर मुअज्जम ने सही कहा कि नहीं। मैं बड़ा हूं, मैं उनके सामने तस्लीम नहीं हूं। वो सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई जैसे लोग होते। गौर करिए, कैरेक्टर्स को समझिए तारीख में। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुल करते हैं तो सुलेमान इमाम हुसैन के पास आता है सुल के दौरान और कहता है अगर तुम कयाम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कितना शौक था लड़ने का, और यही शौक लड़ने का था जब जरूरत पड़ी कूफा में तो घर में घुस गया। ये कैरेक्टर समझे। कूफा में गलत फैसला, कूफा में गलत फैसला, साथ नहीं दिया हुसैन का। अगर यही 4000 का लश्कर लेके हुसैन इब्ने अली के साथ जुड़ जाता तो करबला कुछ और होती। ये रहबर मुअज्जम की तहलील है, जो तारीख में लिखा था खुदा का इज्न था वो अलग है, लेकिन तहलील है, एनालिसिस है। कि जब एनालिसिस क्यों है, इसलिए ताकि हमें समझ में आए कि जब भी तारीख से लिए हुए ये दर्स नहीं अप्लाई करोगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। क्या हुआ? पहला गलत फैसला। दूसरा गलत फैसला, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए और मुख्तार ने हुकूमत बनाई तो इसको अपनी सोल्जर्स लेके मुख्तार के साथ जुड़ना था, वहां पर भी उसने गलत फैसला किया। वहां पर भी उसने कहा कि हम तवाबीन हैं, तौबा करने वाले हैं, हम किसी के लिए लड़ेंगे नहीं, मरने के लिए आए हैं। खुलूस सिर्फ काम नहीं आता अगर बसीरत ना हो कौम के पास। लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन मकसद के साथ नहीं है, विलायत के साथ नहीं है, हक के साथ नहीं है। यह है सुलेमान इब्ने सुरद खुजाई। अब आते हैं हानि की तरफ। अजीजाने गिरामी, हानि कूफा में एक इंफ्लुएंशियल पर्सन है, आम इंसान नहीं है हानि। जब मुस्लिम आते हैं तो सबसे पहले हजरत मुख्तार के घर पे रुकते हैं। जब वो कूफा आते हैं सबसे पहले मुख्तार के घर रुकते हैं। लेकिन जब उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद आता है, हालात सख्त हो जाते हैं, तो मुस्लिम को शिफ्ट किया जाता है हानि इब्ने उरवा के घर पे। क्यों? क्योंकि हानि इब्ने उरवा उस कबीले से थे कि जिस कबीले के लोग इतने मजबूत थे कि उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद सोच भी नहीं सकता था कि उनके घर पे हमला करे। बस जिस मुल्क में रहो हानि इब्ने उरवा की तरह ताकतवर बन के रहो। हानि इब्ने उरवा कबीले के सरदार हैं। कहते हैं जब हानि इब्ने उरवा चलते थे तो उनके साथ अगर वो ऐलान करते थे कि मेरे साथ चलो, तो कहते हैं 4000 सवार और 8000 लोग प्यादा उनके साथ चलते थे। यानी अगर वो कहें कबीले वालों को और साथियों को कि साथ में आओ, तो 12000 ऐसे होते थे और दूसरे कबीले वाले जो इनको सपोर्ट करते थे कहते थे 30000।

हजार से ज्यादा वो लोग थे। यह हानि का पावर था। अबू बैदुल्ला इब्ने ज़ियाद है कहां पर? कूफा में। इतनी पावरफुल शख्सियत कूफा में आपके साथ है, लेकिन हुआ क्या? आप समझें तारीख को, तहलील करें और देखें, कूफा में मुस्लिम की शहादत और कर्बला में हुसैन की शहादत लोगों की बेबसीरती का सबब था। सुनिए, हानि को, मैं कुछ बातों को छोड़ के आगे बढ़ रहा हूं। तारीख में जंगे जमल में हानि ने मौला अली के साथ जंग की और शेर लिखा मौला अली की शान में, और जो मुखालिफत में आए थे उसकी मुखालिफत में। माविया ने पूरी जिंदगी हानि को खरीदना चाहा, हानि बिके नहीं। विलायत के मामले में हानि ने जर्रा बराबर कभी भी कोताही नहीं की। इसे कहते हैं विलायत। विलायत मोहब्बत का नाम नहीं है। हम अहले सुन्नत को कहते हैं मन कुन तो मौला हो फाजा अली उन मौला। यहां मौला का मतलब मोहब्बत नहीं है। तो क्या है मौला का मतलब? मौला का मतलब होता है अपनी नफ्स पे उनको औला समझना, यानी हाकिमियत इमाम को अपने ऊपर तस्लीम करना, उनके हुक्म को अपने नफ्स के ऊपर हाकिम करार देना। इसे कहते हैं मौला, इसे कहते हैं विलायत, कंप्लीट सबमिशन टू द इमाम ऑफ द टाइम एंड हिज नायब। इफ्स एंड बट्स के साथ नहीं, कंडीशंस के साथ नहीं। मेरी 150 साल की रस्म है, इसको क्या कर दूं मौलाना? नो कंडीशंस, सबमिशन टू द इमाम ऑफ द टाइम एंड द नायब ऑफ द इमाम, कंप्लीट सबमिशन। इसे विलायत कहते हैं। अजीजाने गिरामी, सोचें, हानि कूफा में है, मुस्लिम उनके घर पे हैं। अब हानि के घर पे मुस्लिम हैं, ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को पता चल जाता है। हानि इतने पावरफुल थे कि जब हानि की तबीयत खराब हुई तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मिलने आता है हानि को। फिर हानि को कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हारे से मिलने आया था, अब तुम मुझसे मिलने आओ। हानि जानते थे ट्रैप है। अजीजाने गिरामी, काश हम फील कर सकें कि यहां क्या हुआ तारीख में, और काश हम दर्स ले सकें तारीख से। हानि कहते हैं मुझे नहीं जाना चाहिए। हानि के कबीलों के सरदार या उनके जो रिश्तेदार थे, उनके ससुर फला ये वो, जिनको वड़ील कहते हैं हम लोग, उन लोगों ने कहा नहीं, वो आया था तो हमें भी जाना चाहिए। सादा लौ, सादा इंसान, अक्ल और तदबीर ना होना, सादी सादी बातें दुनिया में समझना, दुश्मन की साजिशों को ना समझना। हानि को फोर्स करते नहीं, हम लोग चल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, चलो साथ। हानि जाते हैं। अब सुने, हानि दरबार में है, किले में है कूफा के। हानि को उबैदुल्ला कहता है मुस्लिम तुम्हारे पास है, हमें पता है, मुस्लिम को दे दो। हानि कहता नहीं दूंगा, जान दे दूंगा, नहीं दूंगा मुस्लिम को। हानि को धमकी देता है, हानि नहीं मानते। पहले विलायत थे, जान दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। अजीजाने गिरामी, हुआ क्या? हानि के ऊपर उबैदुल्ला हमला करता है और हानि के मुंह को जख्मी कर देता, चेहरे को जख्मी कर देता, खूना खून हो जाता है हानि। जब कूफा में यह बात फैलती है कि हानि को पकड़ लिया गया, तो पूरे किले का मुहासरा हो जाता है। हानि के चाहने वाले कबीलों के सरदार, कबीलों के लोग हानि को बचाने के लिए आते हैं और पूरे किले को घेर लेते हैं।

उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद डर जाता है, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी इतने लोगों से मुकाबला करने की। होना क्या चाहिए था, अंदर आते, हानि को बचाते, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को वासले जहन्नम करते, और कूफा में हानि और मुस्लिम की हुकूमत होती और हुसैन वहां आते। होना यह चाहिए था, ताकत आपके पास थी, कुव्वत आपके पास थी, वहां पर सिफीन में भी ताकत तुम्हारे पास थी, मालिक अश्तर के पास तलवार थी, यहां भी ताकत तुम्हारे पास थी, तुमने दुश्मन को घेरा था, लेकिन हुआ क्या, बेबसीरती। दुश्मन ने दोबारा प्रोपोगेंडा किया, तदबीर इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंस में। अब यहां पर एक और कैरेक्टर है तारीख में जिसको आपको पहचानना है, जिसका नाम है काजी इब्ने शुरय। काजी इब्ने शुरय पढ़ा लिखा आदमी है, आलिम है, मुज्तहिद है, फकीह है। नौज़ बिल्ला, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, कुछ लोग जो हमेशा हम लोग को सोचना पड़ता है, शायद मैं कह रहा हूं कोई और कुछ सोचेगा, मैं और नौज़ बिल्ला तमाम मुज्तहिद हमारे सर आंखों पर है, हमारे आंखों के नूर हैं, उनकी तरफ इशारा नहीं है, कोई ऐसा ना समझे कि किसी मुज्तहिद के खिलाफ नौज़ बिल्ला बोल रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी है काजी इब्ने शुरय को बुलाया जाता है, और काजी इब्ने शुरय गौर करिएगा, जाके हानी से मिलता है। जब काजी इब्ने शुरय हानी से मिलता है तो देखता है कि हानी कैद खाने में है, बुरी तरीके से जख्मी है। किले के ऊपर आता है, हानी के शिया घेरे हुए हैं, ये खुद कहता है काजी इब्ने शुरय, कहता है कि मैंने उस वक्त ये सोचा कि अगर मैं इनको कह दूंगा कि हानी जख्मी है तो शायद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मुझे मार देगा, तो मैंने ये बेहतर समझा कि मेरी जान का बचाना वाजिब है। पढ़ा लिखा जब गुनाह करता है तो गुनाह की इस्लामी दलील भी लेके आता है। हुआ क्या, काजी इब्ने शुरय ने खुद की जान बचाने को हानी की जान से, हुसैन की जान बचाने से ज्यादा अफजल समझा, अपनी जान बचा लिया, लेकिन अपनी ही तलवार से हुसैन का गला काट दिया। हमेशा पढ़े लिखे लोग आपकी हिदायत नहीं करते, पढ़े लिखे होने के साथ बसीरत का होना जरूरी है, वरना तारीख में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे तो बहुत थे लेकिन बसीरत ना थी तो पूरी कौम को डुबा दिया। काजी इब्ने शुरय वो है जिसने फतवा दिया था, इमाम हुसैन की कत्ल करने का फतवा काजी इब्ने शुरय ने दिया था, क्या नहीं जानता था हुसैन हक पे हैं। आज अरब बादशाहों के नीचे गुलाम जो बैठे हुए हैं मक्का के अंदर, जो नमाज पढ़ा रहे हैं, कुरान हिल हिल के पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं जानते कि ट्रंप मलून है, क्या नहीं जानते कि अमेरिका और इसराइल जालिम है, लेकिन उनके खिलाफ फतवा देने की कुव्वत और कुदरत नहीं है। क्यों, पढ़े लिखे हैं लेकिन बसीरत भी नहीं है, शुजात भी नहीं है। आज पूरी दुनिया यही है, दुनिया नहीं बदली अजीजाने गिरामी, वही दुनिया है। आपको आज कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा कैरेक्टर कौन है आज। काजी इब्ने और लोग इनकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, मौलाना छे आप भी कुम से आए, वो भी कुम से आया, आप भी नजब से आए, वो भी नजब से आया, हम कैसे फैसला करें। आप अगर फैसला नहीं कर सकते तो हमेशा पहले बसीरत की कैटेगरी में नहीं आ सकते। कौम में इतनी बसीरत होना चाहिए कि कौम प्रेशर क्रिएट करे हक के लिए। आप देखें आज ईरान में क्या हो रहा है, ईरान की आवाम गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि जालिम के सामने झुकना नहीं है।
عوام کی بصیرت اتنی بلند

आनंद है कि अवाम 130 दिनों से मैदान में आके खड़े रह के कह रही है कि हमारा रेड लाइन विलायत फकीह है। ये अवाम के अंदर बसीरत है। काजी इब्ने शुरय गलत डिसीजन लेता। अब सुने ये काजी इब्ने शुरय के कैरेक्टर को, अब हमारे कैरेक्टर को देखें। काजी इब्ने शुरय किले के ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद काजी इब्ने शुरय लोगों से कहता है कि मैंने देखा हूं कि हानि ठीक है, आप घर चले जाएं। इन लोगों को क्या कहना चाहिए था? इनको कहना चाहिए था हम जाएंगे नहीं, हानि को बुलाओ, हानि को लेके जाएंगे। बसीरत नहीं थी इसके लिए, एक जाहिर पढ़े लिखे मुकद्दस चुकद्दस को देख के पिसल गए। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि ये घर गए, हमले हुए, वहां हानि शहीद हुए, इनमें से फिर पकड़ पकड़ के मारा गया। तो कूफा में शहादत क्यों हुई? इसलिए नहीं कि दुश्मन ताकतवर था, इसलिए हुई क्योंकि जो वहां पर कह रहे थे कि हम अहले हक हैं, उनके अंदर बसीरत नहीं थी, इसलिए शहीद हुए। अजीजाने गिरामी, आप गौर करिए, हमें लगता है करबला में सिर्फ इमाम हुसैन का खैमा था और यजीद का खैमा था, ऐसा नहीं था। उलमा कहते हैं खैमे तप्पे कहते हैं उसे, कि एक खैमा बनाया गया था जो खैमे में कूफा वाले बैठे थे, इसलिए कि अगर हुसैन जीत जाएंगे तो मैं हुसैन के साथ हो जाऊंगा, और हुसैन अगर दुआ करते थे कि खुदाया मेरी नुसरत फरमा, तो यहां से ये लोग दुआ करते थे खुदाया इसकी नुसरत फरमा ताकि मैं इसका साथ दे सकता हूं। मैं साथ दूंगा नहीं, वो कामयाब हो जाएगा उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। ये बसीरत की कमी है। बसीरत की कमी होती है तो हमें लगता है इमाम का काम मुझे बचाना है, जबकि इमाम का काम इस्लाम को बचाना होता है, उम्मत का काम होता है इमाम का दिफा करना। लेकिन बसीरत ना हो तो कौम इस हालत पे आ जाती है। रहबरे मौजम कहते हैं कि ये करबला और ये जो कूफा और ये जो जंगे सिफीन के हालात हैं, अगर कौम ने सही दर्स लिया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। अब इसके बरखिलाफ कैरेक्टर्स को देखें, उन कैरेक्टर्स से भी दर्स लें। एक सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बसरा में खत लिखा तो वहां पर एक इमाम के साथी थे जिनका नाम गालिबन मेरे जहन में यजीद बिन सुरत नाम था उनका। उनके 12 बच्चे थे, 12 बेटे थे, या 10 बेटे थे। 10 में से 8 बेटे उनके साथ नहीं आए, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला 2 बेटे उनके साथ मैदान में करबला पहुंचे। या अली, ये 2 बेटे उनके आए। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूं उस पर गौर करें, खुसूसन जवान। 2 कैरेक्टर्स हैं, एक कूफा में एक बसरा में। कूफा वाले, उनका इमाम नायब इमाम शहीद हो रहा है, ये घर पे बैठे हैं, ये रुके हैं, इमाम आएंगे तब हम कुछ करेंगे। बसरा वाला साथी, जैसे उसे पता चलता है कि इमाम मदीना से हरकत कर चुके हैं, वो फौरन बसरा छोड़ के इमाम के पास जुड़ने के लिए आ जाता है। 2 टाइप के कैरेक्टर्स हैं विलायत के अंदर, एक रुके हैं कि इमाम आएंगे।

एक वो हैं जो खुद तैयारी कर रहे हैं इमाम के आने के लिए। बसरा के चारों तरफ मिलिट्री चेक पोस्ट लगे हुए हैं, निकलना सख्त है। ये कहते हैं कि अगर तलवारों के रास्ते भी बन जाएं तो तलवारों को चीरते हुए हुसैन के पास पहुंचूंगा। ये ईमान है, ये विलायत है, ये सबमिशन है। अजीजाने गिरामी, मक्का पहुंचते हैं। अब देखें जो खुद को इमाम के लिए तैयार करते हैं, साबित कदम रहते हैं, और हम लोग जो दुआए अहद में पढ़ते हैं कि वो इकदाम पहले करते हैं, पहलकदमी करते हैं, इमाम के साथियों की निशानियों में से है। वेट नहीं करते, पहलकदमी करते हैं। इमाम उनके साथ कैसा सलूक करते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि ये साथी बसरा से आ रहा है, इमाम मक्का में होते हैं। इमाम उस वक्त अपना खैमा, गौर करिए, अपना खैमा छोड़ के मक्का से बाहर जाते हैं उस साथी के इस्तकबाल के लिए। यह है बसीरत। आपको वेट नहीं करना है कि सिचुएशन खराब हो जाएगी फिर एक्शन लेंगे। आपको एक्शन पहले लेना है ताकि सिचुएशन खराब ना हो। अजीजाने गिरामी, बसीरत कहते हैं उसे हैं कि जो इंसान हदीस मासूम की अल आलिम बे जमाने ही लाता हजमो अलैहि लवाबिस, के मासूम कहते हैं कि जो जमाने का आलिम होता है, जमाने से बाखबर होता है, उसे मुश्किलें और खताएं बलाओं में नहीं डालती, क्योंकि जमाने का आलिम होता है, अवेयर होता है, उससे लड़ने के लिए तदबीर बना चुका होता है। बसीरत यानी सही वक्त पे सही फैसला लेना। इसलिए जो अहले मिंबर हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी रोज़े कयामत हमारे हिसाब अवाम की तरह नहीं होंगे, दर्जात भी वैसे ही बुलंद होंगे और सख्तियां भी वैसी होंगी कि तुमने सही वक्त पे अगर सही फैसला लिया होता तो आज कौम कहीं और होती। एक गलत डिसीजन, जैसे रहबर मौजम शहीद ने कहा था कि हम पीक से बहुत नजदीक हैं, अगर सही फैसला किया तो बहुत बुलंदी तक पहुंचेंगे, और अगर हमारे मैनेजमेंट ने गलत डिसीजन लिया तो वहां से बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। बस अजीजाने गिरामी, आज की दुनिया में वो शियत नहीं है जो हाथ जोड़ के पैर जोड़ के कह रही है भाई जीने दो। आज वो शियत है जो पूरी दुनिया को कह रही है कि आज जुल्फिकार अली का सामना करना। या अली। अजीजाने गिरामी, आज की दुनिया में हमें अपने आप को हमाहंग करना होगा, सिंक्रोनाइज करना होगा, पूरी दुनिया की शिया मूवमेंट का हिस्सा बनना। न्यूट्रल नहीं रह सकते हम लोग। आज हक व बातिल वाज़े है। अहले बसीरत वो होते हैं जो सही वक्त पे सही फैसला करते हैं। आज जरूरत है शिया एक उम्मत बन के उठे। मरजियत और निजाम विलायत फकी दोनों को लेके चले। ये अहले बसीरत होने की निशानी है आज। अजीजाने गिरामी, बस तारीख में बड़े वाकयात हैं, लेकिन जो असल चीज है वही उम्मत की बेदारी, उम्मत का अहले बसीरत होना और अपने नायब के सामने सबमिट करना, उनकी तदबीर पे चलना, ये कौमों को बुलंदी और उरूज अता करता है। बस अजीजाने गिरामी, बसीरत वो चीज है जिसके अंदर चार उनवान छुपे हैं। एक, बसीरत यानी ये कि आप जिस जमाने में जिंदा हैं उस जमाने में अपने रहबर कायद को

पहचाने। दो, बसीरत यानी जिस जमाने में जिंदा हैं अपने दुश्मनों को भी पहचानो। तीन, अपने कायद अपने रहबर अपने मर्जा की बताई हुई तदबीरों को भी पहचानो। और चार, दुश्मन की साजिशों से भी आगाह रहो। जिस कौम में ये चार सिफतें पाई जाएंगी वो कौम अहले बसीरत होगी। कायद भी पता है, कायद की तदबीरें भी पता हैं। आप देखें एक आयतुल्ला सीस्तानी ने कैसे इराक के माहौल को बदल दिया। आप सोचें ये तमाम जीसीसी कंट्रीज जो हैं इन्होंने, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कैंट कह रहा है, जो अमेरिका के काउंटर टेररिज्म का हेड था जिसने रिजाइन किया, वो कह रहा है जब इराक के अंदर हुकूमत शियों की आई तो इनको डर लगा कि अब तो शिया ताकतवर हो रहे हैं। ईरान में शिया हैं, इराक में शिया हैं, लुबनान में शिया हैं, यहां तो पूरा क्रेसेंट बन रहा है। तो इन्होंने, अरब बादशाहों ने पैसा खर्च किया ताकि टेररिस्ट आइसिस को क्रिएट किया जाए ताकि शियों का मुकाबला कर सके। आयतुल्ला सीस्तानी ने उस जमाने में तदबीर दिखाई और हश्दु शाबी को बनवाया। वहां से ईरान ने फुल सपोर्ट किया, यहां से आयतुल्ला सीस्तानी ने फतवा दे के सपोर्ट किया। यह बता रहा है कि मर्जियत और विलायत फकी इन सिंक है। आयतुल्ला सीस्तानी को नॉन पॉलिटिकल, आयतुल्ला सीस्तानी पोप से मिले, कुछ देर मिले, 6 या 8 लाइन का एक लेटर लिखा, उसमें भी फलस्तीन का नाम लिखा है। बहुत सारी चीजें लिख सकते थे, क्यों फलस्तीन का जिक्र किया पोप के सामने? अजीजाने गिरामी, हमारा हौजा, हमारी मर्जियत हमेशा से बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए और बैतुल मुकद्दस के साथ खड़ी रही है। अब जाके देखें, फतावा देखें, हत्ता मराजों ने कदीम में कहा कि हमारे खुम्स का पैसा दे सकते हैं आप उन कामों के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए। बस आयतुल्ला सीस्तानी की तदबीर से क्या हुआ कि इनका प्लान था कि इराक में शियों को कमजोर बनाया जाए, कई टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। आयतुल्ला सीस्तानी के एक फतवे ने अमरीका के पूरे प्लान को तहस नहस कर दिया। ये ताकत है फतवे की और ये ताकत है अहले बसीरत लोगों की। फतवे का असर यह हुआ अजीजाने गिरामी कि अमेरिका का जो उस जमाने का रिप्रेजेंटेटिव था जॉर्ज बुश का, वो आया मिलने के लिए आयतुल्ला सीस्तानी से, कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। आयतुल्ला सीस्तानी ने कहा अपने सेक्रेटरी को बाहर, कहा कि मैं भी ईरानी हूं, तू भी अमेरिकन है, हम दोनों को इराक के मामले में नहीं बोलना चाहिए। इसे कहते हैं अहले बसीरत। उसको कहा तेरा जो लेटर है मेरे सेक्रेटरी को दे और वहां से जा। आयतुल्ला सीस्तानी ने बताया कि तू अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव होगा लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझ जैसे पाक के पास आके बैठे। या अली अजीजाने गिरामी, बस अजीजाने गिरामी, तारीख में शिया कमजोर रहे हैं हमेशा से। शिया हुकूमतें किसी और की रही हैं, शिया कमजोर रहे हैं। शियों ने हमेशा से कहा कि हमें जीने दो, हमें जिंदा रहने दो। वो हाकिमियत इलाही जो अहले बैत चाहते थे कभी हमारे पास नहीं आई। आज शोहदा के खून का असर है कि हाकिमियत इलाही हमारे पास है, कुव्वत व कुदरत हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, मर्जियत हमारे पास है, विलायत फकी हमारे पास है। और उसका असर यह है कि यजीदियत आज हमारे पैरों की नोक के ऊपर है। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अजीजाने गिरामी, आज की दुनिया में अपने को सिंक करें, जो शिया मूवमेंट चल रहा है उसका हिस्सा बनें।

न्यूट्रल रहने का जमाना नहीं है, लेकिन अहले बसीरत बने, हक बातिल के खेमे में खुद के कैरेक्टर्स को क्लैरिफाई करें कि इस जमाने में मेरा कैरेक्टर क्या है, कहीं मैं कूफा वालों की तरह तो नहीं हूं कि खामोश रहूंगा चाहे जो हो जाए, नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है। लेकिन पार्टिसिपेशन के, जैसे मैंने कहा, अलग अलग तरीके हैं, कोई हो सकता है पैसे से करे, कोई कल्चर से करे, कोई वॉर से करे, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हक और बातिल के खेमे में मैं न्यूट्रल नहीं रह सकता, मुझे हक का साथ देना है, बातिल के मुकाबले पे खड़ा होना। अजीजाने गिरामी, बस अहले बसीरत कौम जो होती है वही जहूर के लिए तैयार हो सकती है। रिवायतें बहुत हैं अजीजाने गिरामी, लेकिन वक्त तेजी से गुजर गया। एक मैं मिसाल देके आपको रब्त मसायब करना चाहता हूं। अजीजाने गिरामी, दो इस्तेलाह हदीस में है, एक है इबरत और एक है बसीरत। मासूम कहते हैं कि इबरत हासिल करो ताकि तुम अहले बसीरत बनो। क्या मतलब है इबरत हासिल करो ताकि तुम अहले बसीरत बनो? अजीजाने गिरामी, मासूम कहते हैं इबरत का मतलब क्या होता है? इबरत का मतलब यह होता है कि कोई चीज को उबूर कर लेना, यानी मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, वो मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। पहली बार उसे सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स लगे, सेम उसको दोबारा देंगे तो कितनी देर लगेगी? शायद 5 मिनट भी ना लगे। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रॉब्लम को उबूर कर लिया है। इबरत यानी जिंदगी में वाकयात को देखने के बाद ऐसा दर्स लो कि वो दर्स सबब बने कि तुम उस मुश्किल को उबूर कर सको। जो मुश्किलों को उबूर कर लेता है कहा जाता है इसने इबरत ले ली है, और जो इबरत लेता है क्योंकि उसने दर्स ले चुका है, अगले कैलकुलेशन में दर्स उसका इंक्लूड होगा, इसीलिए कहा जाएगा यह अहले बसीरत है। यानी मुश्किलें वाकयात देखने के बाद इबरत लेके अपने अंदर बसीरत को बढ़ाना। और इबरत और बसीरत में एक रिलेशन है, जितना इंसान इबरत लेता जाएगा उतना अहले बसीरत होता चला जाएगा। बस अजीजाने गिरामी, बसीरत के लिए मासूम ने कहा कि जिसके पास बसीरत नहीं है उसके पास कोई दीन नहीं हो सकता। बसीरत कौमों को बुलंदी अता करती है, बसीरत इमामों को सुकून अता करती है। अजीजाने गिरामी, करबला में एक ऐसा ही बाबसीर जवान था। हार बाबे अजा, पता नहीं मुहर्रम के कितना जल्दी जा रहा, शायद चंद रातें रह गई है मुहर्रम। अरबाबे अजा हुसैन अपने जवान बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे जवान से। शबीए रसूल था। हुसैन कहते हैं कि जब भी मुझे अपने नाना की जियारत की तमन्ना होती थी, दिल करता था तो अली अकबर को देख लेता था। हार बाबे अजा, शबे आशूर गुजरी, सुबह आशूर आई तो एक जवान ने अजान दी, कहा अल्लाह अकबर। ये अजान अली अकबर है अरबाबे अजा, इस अजान अली अकबर में नासिर ओ अंसार ओ अहले बैत सारे नमाज पढ़ रहे।

दिन गुजरता रहा और लाशों पे लाशें उठाते रहे, और बाबे ऐसा वो मंजिल भी आई कि अली अकबर बाबा के पास आए, कहा बाबा जंग की इजाजत मिलेगी? एक जवा अपने बाबा से मरने की इजाजत मांग रहा है। और बाबे ऐसा हुसैन ने एक लम्हे की देरी नहीं की, फौरन कहा तकद्दम वलदी, आगे बढ़ो बेटा। कहा पहले जाओ अपनी अम्मा से फूफियों से इजाजत ले लो, फिर उसके बाद मैदान में जाना। अली अकबर खेमे में आते हैं, मादर के पास आते हैं, अपनी माँ के आगे हाथों को जोड़ के कहते हैं, मैं चाहता हूँ हुसैन पर कुर्बान हो जाऊं। मुझे नहीं पता कि इतना हसीन जवान जब शहादत की तमन्ना लेके आया तो उस माँ ने कैसे इजाजत दी, लेकिन इजाजत मिल गई। फूफी अम्मा के पास गए, अरबाबे अजा ज़ैनब अली अकबर से बहुत मोहब्बत करती थी, कहते हैं मदीना में ज़ैनब का अली अकबर से उन्स इतना मशहूर था कि लोगों को लगता था कि अली अकबर की मादर है ज़ैनब। अरबाबे अजा ज़ैनब खेमे में है, अली अकबर आए हैं, जानते हैं बड़ा सख्त है इजाजत लेना। अली अकबर आए, गोद में लेट गए, फूफी अम्मा एक सवाल है। कहा क्या सवाल है बेटा? कहा बताओ आप ज्यादा अहले फजीलत हैं या फातिमा जहरा? मुझे नहीं पता जब ज़ैनब ने फातिमा जहरा का नाम सुना तो क्या मदीना याद आया होगा, क्या दुश्मन का तमाचा याद आया होगा, क्या जला हुआ दरवाजा याद आया हो। हार बाबे अजा ज़ैनब ने कहा क्या बात कर रहे हो, फातिमा जहरा सैयदतुन्निसाइल आलमीन है। कहा फूफी अम्मा फिर इजाजत दो कि आपका बेटा फातिमा के बेटे पे कुर्बान हो जाए। हार बाबे अजा अली अकबर का मुश्किल मरहला खत्म हुआ, इजाजत मिल गई। अब दुश्मन का रावी कहता है कि जब भी कोई अहले बैत में से निकलता था तो खेमे में जाता था रुखसती के लिए, फिर वो वहां से बाहर निकल जाता था। लेकिन इस बार मैंने क्या देखा कि खेमे का पर्दा उठता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। मुझे समझ नहीं आया। ए रावी मैं तुझे समझाता हूँ। अरे अली अकबर आना चाहते हैं, कभी मादर गले लग जाती है फिर आना चाहते हैं, तो कभी फूफी गले लग जाती है। अजब नहीं अली अकबर निकलना चाहते हो, एक छोटी बच्ची पैरों से लिपट जाए। भैया भैया जो मैदान में गया वो वापस ना आया भैया। हार बाबे अजाली अकबर आए अपने बाबा के पास आके का बाबा अलविदा बाबा। अब हुसैन ने कहा मेरी एक गुजारिश है। कहा क्या बाबा? कहा देखो बेटा महलन महला जब जाओगे ना तो आहिस्ते आहिस्ते जाना, और जब जाओगे मुझे पलट पलट के देखते रहना ताकि तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत कर सकूं।

एक बार फरमा बरदार बैठे थे, जब पलट के देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप चलते हुए चलते हुए आ रहा है। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा क्या कर रहे हो बाबा? ऐ अली अकबर, अगर तेरा जवां बेटा होता तो तू समझता कि जवां बेटे की मोहब्बत क्या होती है। अली अकबर सवार हुए, मैदान में गए, हुसैन देख रहे हैं, अली अकबर हमले पे हमले कर रहे हैं। एक बार क्या देखा हुसैन ने कि अली अकबर पलट के वापस आ गए। अरबाब अज़ा, उलमा कहते हैं शायद अली अकबर इसलिए वापस आए थे क्योंकि जानते थे हुसैन सुकून में नहीं है, एक बार हुसैन से मिलने आए थे। अरबाब अज़ा पहुंचे, का क्या अजीब जुमला का, का बाबा बाबा प्यास मारे डाल रही है बाबा। एक जवान अपने बाबा से कुछ मांग रहा हो, अरे हुसैन के लिए कितना सख्त है कि बच्चे को पानी ना दे सके। अरबाब अज़ा, उलमा कहते हैं पहले अंगूठी दी, अंगूठी चूस लो बेटा शायद थोड़ा सुकून आ जाए। उलमा कहते हैं फिर अपनी जबान चुसाना चाहा, कहा उसमें तरी होगी, लेकिन हाय हुसैन, हाय प्यासे हुसैन, 3 दिन का प्यासा हुसैन। जैसे ही मुंह डाला फौरन बाहर आ निकाल लिया, का बाबा बाबा आपकी जबान में तो कांटे लगे। अरबाब अज़ा बस कुछ रोने की रातें हैं, रोले। अली अकबर गए लड़ने के लिए, खूब जंग की। एक मौका आया कि एक शकी ने चुपके वार किया, बच सीना जो है फसली में घुस गई। अली अकबर से सब्र ना हुआ, उलमा कहते हैं कि अली अकबर ने संभलने के लिए अपने हाथ को फरस पे घोड़े पे डाल दिया। दुश्मन हमला करता रहा, वो मंजिल आई कि अली अकबर का खून घोड़े की आंखों में चला गया। अब अली अकबर घोड़े को दिख नहीं रहा था, दुश्मन ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि घोड़ा उस रास्ते पे चलता रहा। अतराफ में तमाम लोग हैं, किसी के पास तलवार है तो किसी के पास खेमा, किसी अरे वार पे वार होते रहे। हुसैन इब्ने अली वहां से चले, हुसैन जब चले तो आवाज दे रहे थे, या अली, मुझे नहीं पता नजफ के अली को पुकार रहे थे या करबला के अली अकबर को। हार बाबे ऐसा वो मंजिल आई, उलमा कहते शेख उर्रामली कहते हैं कि जब हुसैन नजदीक पहुंचे तो हुसैन को गम इतना तारी हुआ कि हुसैन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूछ रहे थे ऐ अली अकबर कहाँ हो, ऐना अली अकबर। हार बाबे ऐसा वो

सीने में, अरे बरची है, सीने में बरची है, अरबाब अजा हुसैन ने आस्तीनों को पलटा, बरची को पकड़ा, कहा बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वफी सबीलिल्लाह, साथ में अली अकबर का कलेजा आ गया। हार बाबे अजा अली अकबर मैदान करबला में लेटे गए, हुसैन ने सीधा हाथ अली अकबर का लिया, अपने गर्दन पे डाला, दूसरा हाथ कहा अरे बेटा मदद कर दो, मेरी कमर पे हाथ रख दो, मौला कैसे मदद करे अली। अजब नहीं आवाज दी हो, अरे एक बूढ़ा बाप जवान का लाशा कैसे उठाए, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन तन्हा है, हुसैन की मदद को आओ। मातम हुसैन ये